FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की एकादशी तिथि तदनुसार 3 जुलाई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:58 और 32 सेकंड हुए हैं। आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजा चाहते हैं, अब आप सुनेंगे समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हे जगत जननी माँ, तेरी महिमा अपरंपार है। आपके चरण कमलों की पूजा करके सुर, नर और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। आप सदा सबके हृदय में निवास करते हो और आप अपने भक्त जनों को भली भांति जानते हो, उनके सभी दुखों का निवारण भी करते हो। तेरी सदा ही जय हो।

राम से बड़ा राम का नाम। भगवान श्री राम का चरित्र हमें मर्यादा का पालन करते हुए अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शिक्षा देता है। मर्यादा में रहकर भवसागर से कैसे तरना है, इसका उदाहरण भगवान श्री राम के चरित्र में मिलता है। फिर वह चाहे एक पुत्र की मर्यादा हो, अथवा भाई की मर्यादा, या फिर पति की मर्यादा, क्षत्रिय धर्म की मर्यादा, मानवीय मूल्यों की मर्यादा, सभी मर्यादाओं का पालन विषम परिस्थितियों में भगवान श्री राम ने कष्टों को सहते हुए किया। त्रेता युग से लेकर कलयुग में आज भी भगवान श्री राम की मर्यादा सभी के लिए प्रासंगिक है। प्रत्येक परिस्थिति में मानव मर्यादा का पालन कर अन्याय के विरुद्ध लड़ सकता है। यही शिक्षा भगवान श्री राम के चरित्र को सर्वोत्तम बनाती है। भगवान श्री राम तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हुए सभी सामाजिक मर्यादाओं का पूर्णतः पालन किया। भगवान श्री राम तो श्री राम है, नाम की महिमा इतनी है कि नाम के प्रभाव से सागर भी बंध गया और पत्थर भी तैर गए। तो क्यों ना हम सब भी भगवान श्री राम के नाम के प्रभाव से भवसागर को पार करें।

इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यही संपन्न होता है। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। स्वर महेंद्र कपूर का है और संगीत सतीश भाटिया का।

वानर सम्राट सुग्रीव की अपने चरणों में भक्ति और समर्पण देख श्रीराम ने उन्हें भरत की भांति अपना लिया और उनसे वे सभी उपाय करने का आग्रह किया जिससे सीता का समाचार प्राप्त किया जा सके। सुग्रीव के आदेश पर वानरों की विशाल सेना एकत्र हो गई। पार्वती को यह कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, वानरों की वो सेना मैंने देखी थी। उनकी संख्या इतनी थी जिसकी गिनती करने वाले को मूर्ख ही कहा जा सकता है। सभी वानर श्रीराम के सम्मुख आकर सिर झुकाते हैं। प्रत्येक वानर से श्रीराम उसकी कुशल क्षेम पूछकर उसे कृतार्थ कर देते हैं। सुग्रीव ने असंख्य वानरों की विशाल सेना को सभी दिशाओं में जाकर सीता जी को ढूंढने का आदेश दिया और इस काम के लिए एक माह का समय दिया। अपने राजा के सामने एक बार फिर सिर नवाकर वानर श्रीराम का स्मरण करते हुए विभिन्न दिशाओं में चल दिए। सबके अंत में जब पवन सुत हनुमान ने सिर नवाया तो श्रीराम ने उन्हें अपने पास बुलाकर अपने कर कमलों से उनका सिर स्पर्श किया तथा अपना अनन्य सेवक जानकर उन्हें अपनी अंगूठी उतार कर दी। बोले, सभी प्रकार से सीता को समझा बुझाकर शीघ्र लौट आना।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। स्वर महेंद्र कपूर का था और संगीत सतीश भाटिया का। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आप सुनिए देश गान।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

और अब सुनिए कार्यक्रम रूपरेखा। पहले आज की तिथि, आज शुक्रवार है। विक्रमी संवत 2083 की आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026।

CERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुनते हैं सुबह 8:30। सुबह 7:40 पर आपको सुनवाएंगे गांधी चर्चा। सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय आपका जाना पहचाना सुबह 10 से 11 बजे तक। कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए आपको मिलाना होगा केंद्र का दूरभाष नंबर 01744221322। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:30 पर। शाम 6:20 पर गीता संदेश में आज आप सुनेंगे 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 27 से 30 की व्याख्या करेंगे डॉक्टर नितिन कुमार। किसान भाइयों का कार्यक्रम अन्नदाता होगा शाम 6:30। ग्राम संसार ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7 बजे। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। लोकगीत का कार्यक्रम बाजियाए नगाड़ा होगा सुबह 7:50 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 पर। और शाम 7:45 पर सुनेगा कार्यक्रम गुलदस्ता।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 बजाते हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में, उसके बाद 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधान

0: प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुं आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालां आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 सहस्र मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर-ए-तैयबा

जैश मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
0: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
1: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
1: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
0: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
0: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
0: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भू परपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
0: जी।
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

0: गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ।
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
7: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
7: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष।
7: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
4: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
7: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
4: अच्छा।

0: इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में

एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं, इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह,
0: हाँ तो आसिफ खान अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने

0: पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से ही सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवती गढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा?
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
4: देखो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं,

0: पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
0: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
0: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ, मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
0: आश्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा कार्यक्रम में आज सुनिए उपवास के संबंध में गांधी जी के विचार। जिन दिनों मैंने दूध और अनाज छोड़कर फलाहार का प्रयोग शुरू किया, उन्हीं दिनों संयम के हेतु से उपवास भी शुरू किया। एक मित्र की प्रेरणा से मैंने ये समझा कि देह दमन के लिए उपवास की आवश्यकता है। चूंकि मैं वैष्णव कुटुंब में पैदा हुआ था और चूंकि माताजी कठिन व्रतों का पालन करने वाली थीं, इसलिए देश में एकादशी आदि व्रत मैंने किए थे, किंतु वे

देखा देखी अथवा माता पिता को प्रसन्न करने के विचार से किए थे। ऐसे व्रतों से कोई लाभ होता है इसे न तो मैं उस समय समझा था और न ही मानता था। मित्र को उपवास करते देखकर और अपने ब्रह्मचर्य व्रत को सहारा पहुंचाने के विचार से मैंने उनका अनुकरण करना शुरू किया और एकादशी के दिन उपवास रखने का निश्चय किया। साधारणतः लोग एकादशी के दिन दूध और फल खाकर समझते हैं कि उन्होंने एकादशी की है, पर फलाहारी उपवास तो अब मैं रोज ही करने लग गया था, इसलिए मैंने पानी पीने की छूट रखकर पूरे उपवास शुरू किए। उपवास के प्रयोगों में आरंभिक दिनों में श्रावण का महीना पड़ता था। उस साल रमजान और श्रावण दोनों एक साथ पड़े थे। गांधी कुटुंब में वैष्णव व्रतों के साथ शैव व्रत भी पाले जाते थे। कुटुंब के लोग वैष्णव देवालयों की भांति ही शिवालयों में भी जाते थे। श्रावण महीने का प्रदोष व्रत कुटुंब में कोई न कोई प्रतिवर्ष करता ही था, इसलिए इस श्रावण मास का व्रत मैंने रखना चाहा। इस महत्वपूर्ण प्रयोग का प्रारंभ टॉलस्टॉय आश्रम में हुआ था। वहां सत्याग्रही ही कैदियों के कुटुंबों की तरह कुटुंबों की देखरेख करते हुए कैलन बैक और मैं दोनों रहते थे। उनमें बालक और नौजवान भी थे, उनके लिए स्कूल चलता था। इन नौजवानों में 4-5 मुसलमान थे। इस्लाम के नियमों का पालन करने में मैं उनकी मदद करता था और उन्हें बढ़ावा देता था, नमाज वगैरह की सहूलियत कर देता था। आश्रम में पारसी और ईसाई भी थे। इन सबको अपने अपने धर्मों के अनुसार चलने के लिए प्रोत्साहित करने का आश्रम में नियम था। अतएव मुसलमान नौजवानों को मैंने रोजे रखने के लिए उत्साहित किया। मैंने हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों को भी मुसलमान नौजवानों का साथ देने की सलाह दी। मैंने उन्हें समझाया कि संयम में सबके साथ सहयोग करना उचित है। बहुतेरे आश्रमवासियों ने मेरी बात मान ली। हिंदू और पारसी मुसलमान साथियों का पूरा पूरा अनुकरण नहीं करते थे। मुसलमान सूरज डूबने की राह देखते थे, जबकि दूसरे उससे पहले खा लिया करते थे, जिससे वे मुसलमानों को परोस सकें और उनके लिए विशेष वस्तुएं तैयार कर सकें। इसके सिवा मुसलमान जो सहरी खाते थे उसमें दूसरों के सम्मिलित होने की आवश्यकता ना थी, और मुसलमान दिन में पानी भी न पीते थे, जबकि दूसरे लोग छूट से पानी पीते थे। इस प्रयोग का एक परिणाम यह हुआ कि उपवास और एकाशन का महत्व सब समझने लगे। एक दूसरे के प्रति उदारता और प्रेम भाव में वृद्धि हुई। आश्रम में अनाहार का नियम था। यह नियम मेरी भावना के कारण स्वीकार किया गया था। ये बात मुझे आभार पूर्वक स्वीकार करनी चाहिए। रोजे के दिनों में मुसलमानों को मांस का त्याग कठिन प्रतीत हुआ होगा, पर नवयुवकों में से किसी ने मुझे उसका पता नहीं चलने दिया। वे आनंद और रसपूर्वक अनाहार करते थे। इस प्रकार सहज ही आश्रम में संयम का वातावरण बढ़ा। दूसरे उपवासों और एकाशनों में भी आश्रमवासी सम्मिलित होने लगे, और मैं मानता हूं कि इसका परिणाम शुभ निकला। सबके हृदयों पर संयम का कितना प्रभाव पड़ा, सबके विषयों को संयत करने में उपवास आदि ने कितना हाथ बटाया, यह मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, पर मेरा अनुभव यह है कि उपवास आदि से मुझ पर तो आरोग्य और विषय नियमन की दृष्टि से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी मैं यह जानता हूँ कि उपवास आदि से सब पर इस तरह का प्रभाव पड़ेगा ही, ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है। इंद्रिय दमन के हेतु से किए गए उपवास से ही विषयों को संयत करने का परिणाम निकल सकता है। कुछ मित्रों का ये अनुभव भी है कि उपवास की समाप्ति पर विषय इच्छा और स्वाद तीव्र हो जाते हैं। मतलब यह है कि उपवास के दिनों में विषय को संयत करने और स्वाद को जीतने की सतत भावना बनी रहने पर ही उसका शुभ परिणाम निकल सकता है। ये मानना निराभ्रम है कि बिना किसी हेतु के और बेमन किए जाने वाले शारीरिक उपवास का स्वतंत्र परिणाम विषय वासना को संयत करने में आएगा। तात्पर्य ये है कि संयमी के मार्ग में उपवास आदि एक साधन के रूप में है, किंतु यही सब कुछ नहीं है। और यदि शरीर के उपवास के साथ मन का उपवास ना हो तो उसकी परिणति दंभ में होती है और यह हानिकारक सिद्ध होता है। अभी आपने सुने उपवास के संबंध में गांधी जी के विचार, और अब सुनते हैं गांधी जी का ये प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम बाज्याय नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार हैं राम कुमार वर्मा।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम बाजाए नगाड़ा। हमारे आज के कलाकार थे राम कुमार वर्मा। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद 8:15 बजे अंग्रेजी में। इन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम

0: हम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।

0: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जट्टा आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश,

0: पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins on both Pehlgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mujtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आज सुनिए सुबह सवेरे संध्या के साथ। साथियों, थोड़ी सी बारिश ने मौसम को सुहावना कर दिया। कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल गई और कार्यक्रम सुबह सवेरे का मौसम तो हमेशा ही सुहावना होता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ एक सवाल, जानकारी और सुविचार। कार्यक्रम का आगाज सुविचार से। मनुष्य जीवन में व्यक्तित्व का विशेष महत्व होता है। सूरत कैसी भी हो, लेकिन सीरत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सीरत ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। मसलन, कुछ लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन उसके बजाय कोई साधारण सा व्यक्ति हमारे मन में अपनी गहरी छाप छोड़ देता है। बाहरी तौर पर सुंदर दिखने वाले शख्स की तुलना में साधारण व्यक्ति के चेहरे पर आई मधुर मुस्कान, उसके व्यवहार में शिष्टाचार और बातचीत करने का सलीका हमारे दिलो दिमाग में एक खास पहचान बना लेता है। हर मनुष्य का अपना अपना व्यक्तित्व, अपनी अपनी पहचान है। इसकी विशेषता यही है कि लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में वह अपने निराले व्यक्तित्व के कारण पहचान लिया जाता है। यानी आपकी छवि सकारात्मक होती है तो आप दूसरों के सामने प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं।

खास बात यह है साथियों कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके केवल एक गुण के कारण नहीं बनता, बल्कि उसमें उसकी संपूर्ण खूबियां जैसे ज्ञान, अभिव्यक्ति, सहनशीलता, गंभीरता, प्रस्तुतिकरण आदि शामिल होती है। इसलिए चेहरे की बजाय दिल को तवज्जो दीजिए, सभी आपको पसंद करेंगे।

और अब वक्त है सवाल का। साथियों, आज आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। आपको उत्तर देना है 8:45 तक टेक्स्ट मैसेज द्वारा। हमारा नंबर आप जानते ही हैं 94-660-21-336। फोन नंबर दोबारा सुन लीजिए 9466-02-1336। प्रश्न एक बार फिर, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है।

और अब बात करते हैं वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण की। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है साथियों। पेड़ पौधे हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तापमान को नियंत्रित करते हैं और बारिश लाने में सहायक होते हैं। पेड़ हवा से प्रदूषक गैसों को फिल्टर भी करते हैं और सांस लेने योग्य स्वच्छ वातावरण हमारे लिए बनाते हैं। पेड़ों की छाया और वाष्पोत्सर्जन, जिसे ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया भी कहते हैं, इससे आसपास के क्षेत्रों का तापमान कम रहता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को कसकर रखती है, जिससे भूक्षरण यानी कि सॉइल इरोजन रुकता है और बाढ़ का खतरा कम हो जाता है। ये भूमिगत जल स्तर को भी बढ़ाने में सहायक हैं। पेड़ लाखों पक्षियों और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होते हैं, तो वृक्षारोपण करके आप पर्यावरण को बचा सकते हैं। स्थानीय पौधे लगाइए, जैसे आपने अपने घरों में लगा रखा होगा गमलों में, या आपके पास मिट्टी है, जगह है, तो आसपास के क्षेत्रों में अनुकूल पौधे जैसे पीपल, नीम, बरगद, आंवला आदि आप लगा सकते हैं। और सभी का योगदान इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक एक करके ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। सब मिलके जन्मदिन, वर्षगांठ या किसी भी विशेष अवसर पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाइए और उसकी देखभाल भी कीजिए। अपने घर के आंगन, छत या बालकनी में छोटे गमले रखकर या लगाकर पौधे के प्रति अपना लगाव बढ़ाइए। और बहुत से नारे भी हम सुनते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, एक पेड़ हजार खुशियां, धरती का श्रृंगार पेड़ पौधे और हरियाली, और एक पेड़ माँ के नाम तो आपने अवश्य लगाया होगा, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन में भोजन और पानी की तरह ही महत्वपूर्ण है। और पेड़ होंगे तभी तो मौसम सुहाना होगा।

साथियों, आज अपने कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न किया था, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल आज ही के दिन यानी 3 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज वाले प्लास्टिक बैग के नुकसानों से लोगों को जागरूक करना है। पर्यावरण, वन्य जीवों और समुद्री जीवों को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना और पुनः उपयोग किए जा सकने वाले यानी कि रीयूजेबल थैलों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, स्वच्छ और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस हर साल 25 मई को मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य दैनिक जीवन में प्लास्टिक को पूरी तरह से ना कहना है, यानी आपको प्लास्टिक को बैन करना है। ये याद दिलाने के लिए हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस मनाया जाता है। साथियों, प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए पूरा जुलाई का महीना

प्लास्टिक फ्री जुलाई के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई जानकारी की, और अब उन साथियों के नाम जिन्होंने सही समय पर सही जवाब दिया है। पहला सही जवाब हमारे पास आया है योगी मोहल्ला बराड़ा अंबाला सी रवि कुमार राहुल रंजीत कौर और गुरशब सिंह राहुल का। ग्राम पंचायत नेहर सवार सिरमौर हिमाचल से आप हैं विनोद तोमर संजू तोमर। दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले। अगला सही जवाब है ढाणी कुतुबपुर जलाहासी हिसार से रामधारी अवाना अनाया और ओजस अवाना का। अगले श्रोता हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और इनके साथ हैं पारसमणि वर्मा। मोटाला महाराष्ट्र से आप हैं विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर। जगोरी से रणधीर बांगर और युगम। नागल से आप हैं इंदर राज। अगला सही जवाब है आखिरी दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी का। गौतम कुरुक्षेत्र से। अगले श्रोता जिन्होंने सही जवाब दिया ये हैं भाना ब्राह्मणा वाला नरवाना से मेघराज शर्मा। बीपी गौतम सरिता गौतम आप हैं एटा रोड गंज चुनवारा उत्तर प्रदेश से। सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह नेपानगर मध्य प्रदेश से। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान आशा सबीहा अनस और रिहान। अगले श्रोता हैं जिन्होंने सही जवाब दिया राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और इनके साथ हैं अखिला प्रसाद। अगला सही जवाब है लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव का। टिया और कृष्णा सोलन हिमाचल से। फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी हियांश कुमार आप हैं सोंगा मगरलोड छत्तीसगढ़ से। अगले श्रोता हैं सुधा मूर्ति और के हली बेंगलोर से। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रॉल नारायणी सिंह रॉल और इनके साथ हैं वान्या सिंह रॉल। अगला सही जवाब हमारे पास आया है सुरेश खुराना पप्पी किरण खुराना लव्या आरब खुराना और एस के पप्पी का। बिहार से आप हैं डब्ल्यू वली बेलदार उल्लाह वली बेलदार और इनके साथ हैं सोनम वली बेलदार। अगला सही जवाब बोटसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू बीमा साहू का। भाटापारा छत्तीसगढ़ से आप हैं हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू। अगला सही जवाब राजेश कुमार मेहरा क्लासिक रेडियो श्रोता संघ बकानी खुर झालावाड़ राजस्थान से। गांव मुरादगढ़ से आप हैं रमेश कुमार काम्बोज वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। अगला सही जवाब है साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति का खमरिया छत्तीसगढ़ से। गांव बांडीवाला फजलिका पंजाब से ओम बगड़िया क्रियांश बगड़िया और बेबी गरिमा बगड़िया। सांतड़ी से ईश्वर दयाल काम्बोज लाजवंती काम्बोज और इनके साथ हैं भव्य काम्बोज। अगले श्रोता हैं काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे सुषमा सुरोशे और इनके साथ हैं मायरा सुरोशे। अगला सही जवाब है डेर पाटन गुजरात से धीरज वीर रबारी का। कविता साहू प्रमोद कुमार साहू आप हैं कदुआपड़ा जगत सिंहपुर उड़ीसा से। अगले श्रोता हैं हनुमंत शिंदे ऋषिकेश शिंदे आप हैं सांगली से। नजफगढ़ नई दिल्ली से सुमन गौरव शर्मा सौरभ शर्मा। अगला सही जवाब जयश्री और सुनील का बेंगलोर से। गांव जाखोद से शंभू दयाल खटक विमला देवी योगेश दीपक कुमारी और पूजा खटक। अगला सही जवाब है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से विनोद खट से। अगले श्रोता है गांव कलाना तहसील भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा सचिन योगेश और युधव कड़वासरा। जगदीश धाकड़ नायमा रंजूबाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ आप हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से। आपने पूरा पता ही लिख दिया। छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी मोहम्मद जोहान सैफी लिबा मलिक और आबाद खान। अगले श्रोता है छत्तीसगढ़ बोटसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू। अगला सही जवाब संतोष नामदेव संजना नामदेव और अनन्या नामदेव का। आप हैं मेन मार्कर सोरई ललितपुर।

से। अगले श्रोता हैं नरेश मल्होत्रा नीटू, भावना मल्होत्रा, अनिल कटारिया खैल बाजार पानीपत से, मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी आप हैं गंज टुंडवारा से, रायसन करनाल से रजनीश बत्रा, कबीर दृष्टि। अगले श्रोता हैं मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, वीरम गाम गुजरात से अर्चना खुशी और कौशल जोशी, इनके साथ हैं अंकित तिवारी। अगला सही जवाब है बन बघेरा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा का, इनके साथ हैं बेबी ख्याति। संजीव स्वामी आप हैं सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़। अगला सही जवाब है बुलढाणा बड़सिंगी से अमोल मानकर, बुलढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर। आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर आप हैं शेरवानी स्कूल गंज टुंडवारा उत्तर प्रदेश से, रश्मि झरना राजकोट गुजरात से, आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े जवाहर नगर दुर्ग से। अगला सही जवाब हमारे पास आया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार का। कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता आप हैं भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, गोंदर करनाल से किरणपाल बुम्बक, राममूर्ति बुम्बक, सरबजीत बुम्बक। और अगले श्रोता हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन, शाहनवाज सरफराज और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य आप हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए हार्दिक धन्यवाद।

साथियों, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की, और अब आपको बताते हैं तीन ऐसी महान व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने उम्र को भूलकर प्रकृति का रक्षक बनना कबूल किया। तीन पद्मश्री बुजुर्ग जिनकी जिद है पर्यावरण बचाने की। हम सबको ऐसी जिद करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दुखू माझी के बारे में। पश्चिम बंगाल पुरुलिया के 81 वर्षीय दुखू माझी पिछले 60 साल से पेड़ लगा रहे हैं। वे आज भी साइकिल पर 2 टीन के डब्बों में पानी, कुदाल और फावड़ा लेकर निकलते हैं। 5,000 से ज्यादा बरगद, आम, जामुन के पेड़ ये लगा चुके हैं। पद्मश्री सहित इन्हें डॉक्टर बीसी रॉय कीर्ति व कई अन्य सम्मान भी मिल चुके हैं। वे बताते हैं कि एक विदेशी ने उन्हें कहा था, आने वाली पीढ़ी ऑक्सीजन को तरसेगी, तब से यह मिशन बना लिया उन्होंने। और अब बात करते हैं आसाम के 66 वर्ष के जादव पायेंग के बारे में। 16 वर्ष की उम्र में ब्रह्मपुत्र के बंजर बालू के टापू पर हर रोज एक पेड़ लगाने का उन्होंने संकल्प लिया। आज वहां 1,360 एकड़ का जंगल खड़ा हो गया। क्या बात है साथियों, इन्हें पद्मश्री सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। वे कहते हैं कि यदि जंगल काटना है तो पहले मुझे काटो। इस जिद ने उन्हें जंगल बनाने पर मजबूर कर दिया। और अब बात डॉक्टर अनिल जोशी की। अनिल जोशी का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। प्रोफेसरी छोड़ नदी झरने जिंदा करने में जुट गए हैं। उत्तराखंड कोटद्वार के 70 वर्षीय डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी 1979 में कॉलेज की प्रोफेसरी छोड़कर पहाड़ों में सूखती नदियों झरनों को पुनर्जीवित करने में ये लग गए। उन्होंने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी यानी ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट का कंसेप्ट दिया। इन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण से लेकर कई सम्मान मिल चुके हैं, और आप इनके लिखे आर्टिकल्स अखबारों में भी पढ़ते होंगे। देश की तरक्की जीडीपी से नहीं जीईपी से नापी जाएगी, क्योंकि पर्यावरण खत्म होगा तो जीडीपी का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही कहा है साथियों इन्होंने। तो हम सभी को इस मुहिम का हिस्सा बनना होगा, तभी हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
4: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
3: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र। 8708903436।
5: दोस्तों, आइए सुनते हैं NIIM विश्वविद्यालय कैथल का कार्यक्रम, आपके सपने हमारा संकल्प।
6: साथियों, अब एक और जानकारी आपसे साझा करेंगे। आप मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में तो जानते ही हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में फुटपाथ पर सुरक्षित रूप से चलने को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है, यानी राइट टू वॉक। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पैदल यात्रियों का यह अधिकार सड़कों पर चलने वाले मोटर वाहनों के विशेषाधिकार से भी ऊपर है। कोर्ट के इस फैसले की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पैदल चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन का अधिकार के बारे में विवरण है, के तहत सुरक्षित है। यदि कोई सड़क मौजूद है और शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाएं और पंचायतें ये सुनिश्चित करेंगी कि पैदल चलने वालों के लिए अलग से फुटपाथ बने हों और वे सुरक्षित और अतिक्रमण से मुक्त हों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क पर पहला अधिकार पैदल चलने वालों का है। सुरक्षित और निश्चिंत होकर चलना सबसे बुनियादी मानवीय गतिविधि है। यदि फुटपाथ नहीं होने या उन पर अवैध कब्जा होने के कारण राहगीरों को सड़क पर चलना पड़ता है और कोई दुर्घटना होती है तो संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो आपने जाना राइट टू वॉक के बारे में, फुटपाथ पर चलने के अधिकार के बारे में। ये अब मौलिक अधिकार बन गया है।

साथियों, जल और जंगल का अटूट रिश्ता है। यदि हमें वनों को वास्तव में बचाना है तो केवल पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ हमें जल संरक्षण भी करना होगा। और आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे, वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इस अवसर पर जल और जंगल के इस अटूट रिश्ते को हमें समझना होगा। ये समझने का समय आ गया है कि इस संसार में पहले जल आया या वृक्ष। ये प्रश्न आपसे कोई पूछे तो आप सीधे कहेंगे पहले जल। इस मौलिक प्रश्न के भीतर हमारी

वनों के रिश्ते को हम किस प्रकार देखती है। अब दोनों में हमें तुलना तो करना ही होगा और इसी संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल की है, एक पेड़ माँ के नाम। हम सभी जानते हैं और आपने लगाया भी होगा एक पेड़ और अच्छे से देखभाल भी कर रहे हैं। एक बेहद संवेदनशील दृष्टिकोण है ये। जब कोई व्यक्ति माँ के नाम पर पौधा लगाता है तो वह उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। इस आत्मीयता के कारण लोग पौधे की केवल रोपाई नहीं करते बल्कि उनके रखरखाव और जीवन की चिंता भी करते हैं। व्यवहारिक पहलू ये भी है कि आज वृक्षों की मृत्यु दर बहुत अधिक है, इसलिए यदि पेड़ बचाना है तो पानी का प्रबंधन भी अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि रोपे गए प्रत्येक वृक्ष के समीप जल संचयन के लिए छोटा गड्ढा बना दिया जाए तो वह वर्षा जल को रोककर पौधे को लगातार सींचता रहेगा। इससे वृक्षों का जीवन प्रतिशत बढ़ेगा और जब पानी और पेड़ साथ लगाए जाएंगे तो संचित जल से भूजल स्तर भी सुधरेगा और हमारी स्थानीय नदियां और जलधाराएं पुनर्जीवित होंगी। जल और जंगल का रिश्ता बेहद अरूट है। इस सत्य को समझते हुए हमें आने वाले समय में सामूहिक प्रयास करने होंगे। पेड़ के साथ साथ पानी का भी रोपण यानी जल संरक्षण भी करना होगा, तभी हम अपनी जन्म देने वाली माँ और पालन करने वाली प्रकृति माँ का ध्यान रख पाएंगे। और ये तभी संभव है जब एक एक करके सभी मिलके प्रयास करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि।

अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और पायल देव को। आइए अब सुनते हैं मधुश्री, पौमिला, गायत्री और कार्तिक को।

0: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
1: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
0: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट TPA पैनल पर उपलब्ध।
1: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
3: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
2: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
3: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आपने सुना चंदन दास को। इसी के साथ स्वरांजलि कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:45 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती।

ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेह पूर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: ये कभी नहीं सोचा कि आप गलत रास्तों पर जाए और आवारगी का चोला पहनकर कल का नवाब सलीम बन जाए। खुदा की कसम हमने ये कभी नहीं सोचा, हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारी दी हुई दौलत से एक ऐसा मकबरा बनाया जाए जिसमें सिर्फ हमारे दिल की ठंडक के लिए आपका सुहाग आपसे छीन कर दफन कर दिया जाए। आपको अगर अब भी यकीन नहीं है तो बच्चे के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। नहीं नहीं, आपका क्या भरोसा, इस वक्त तो आप ये भी कह देंगी कि मेरे बच्चे की झूठी कसम खाते हैं।
1: नहीं नहीं, आप बच्चे की झूठी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है, तन मन की सूद खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, अब आप ये बताइए कि अख्तर।
1: जी हाँ, बात तो पुरानी है लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में कितनी फिरदौस का नाम ले रहे थे।
0: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था। इतनी

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम में। साथियों, आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे क्या है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आप जानेंगे इतिहास में सती प्रथा को रोकने में राजा राम मोहन रॉय के योगदान के बारे में। साथ ही आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। इसके लिए आपको मिलाना होगा केंद्र का दूरभाष नंबर 01744-221-322। तो मिलाइए फोन, सुनिए अपनी पसंद का गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत से।

0: हेलो,
1: नमस्ते जी, इंद्रराज गांव माधवपुर जी।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इंद्रराज जी कैसे हैं? पहली कॉल आपकी लगी है, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बढ़िया जी, ठीक ठाक। गर्मी बहुत है जी।
0: गर्मी तो होगी ही जब हम अपने
1: खाद वगैरह खेत में बैठे जी,
0: तो आप रेडियो सुनते हुए अपना सारा काम करते हैं ना
1: जी।
0: और इससे फायदा तो यही है ना।
1: बहुत बहुत बहुत दिल लगा रखे जी।
0: क्या बात है, आपका दिल लगा रहता है और काम भी बढ़िया होता है। और इंद्रराज जी, पूरा जो जुलाई का महीना है ना, उसे हम प्लास्टिक फ्री महीना के रूप में मनाते हैं। तो प्लास्टिक
1: के लिए तो अपना जो खुद अपने आप तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए तो सामान ले जाओ, अपना आदमी अपना घर से थैला ले जाओ या कोई कट्टा वगैरह लेके जाओ। अगर प्लास्टिक का प्लास्टिक के लिए सामान लेने के लिए बर्तन है अपना
0: जी, तो प्लास्टिक बहुत अच्छी
1: गलती हो सब गांव में बिछरे जी। पानी जो आता है अंदर से बाहर जाता है, वैपों के अंदर से अंदर आता है गाँव में
0: जी।

0: पैसों में प्रशासन खर्च जाएगी, पैसों पता ही आ जाएगा क्या अपना
1: क्या
0: बहुत खर्चा हो जाए निकलवाने के बाद, बहुत खर्चा
1: है तो इसीलिए सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। और आपकी सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी रक्षा करेंगे तो पूरे समाज की रक्षा अपने आप हो जाएगी। थोड़ी सी बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, आपने बता ही दिया, अच्छी सलाह दे दी कि जब भी बाजार जाएं तो अपना थैला साथ में लेकर जाएं, और सिंगल यूज प्लास्टिक का तो बिल्कुल ही प्रयोग ना करें जो दोबारा प्रयोग में नहीं लाई जा सके, है ना, क्योंकि इनकी रिसाइकलिंग भी नहीं होती, और गलती से कोई पॉलीथीन जानवर खा लेता है तो उसके लिए तो दिक्कत है, और दूसरा नालियों में जो फंस जाए तो वो निकलवाने की बात आपने बता ही दी, बहुत समस्या खड़ी होती है। तो अच्छी जानकारी आपने साझा की। और अब आपकी पसंद का गीत, कौन सा गीत सुनवाया आज आपको कार्यक्रम में? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कार्यक्रम आपके लिए ही बनते हैं, और हमारी कोशिश होती है श्रोताओं को पसंद आए।
0: बड़े खुश हूँ जी, अच्छे भजन हर अच्छे गाने चलाऊंगा, सब खुश हूँ जी।
1: तो हमें बहुत अच्छा लगा, और अच्छी कोशिश करेंगे।
0: रावण का मरना मुश्किल थी
1: जी,
0: जो राम जी ना होंगे
1: क्या बात,
0: माता सीता का पता लगना मुश्किल थी जबीर हनुमान जी ना होंगे
1: क्या बात है, बहुत ही मतलब।
0: और जी इनका पांडवों का जीतना मुश्किल थी जे कृष्ण जी अवतार ना होंगे, इस महफिल का सजना मुश्किल जो आप जैसे बरखुरदार ना होंगे।
1: क्या बात है, आपने तो सारी बात लास्ट में मतलब हर चीज को सभी तुकबंदी अच्छे से कर दी, हनुमान जी के बिना राम नहीं होते, और कृष्ण जी और कार्यक्रम के बारे सबको आपने एक साथ जोड़ दिया, बहुत अच्छा लगा। और अब आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं, जल्दी से अपनी पसंद का गीत बता दीजिए। तो आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सबको नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन से श्रोता जुड़े हैं नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम से?
1: जी मैं प्रेम जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह जी से बात हो रही है उज्जैन से। प्रेम सिंह जी कैसे हैं और आज कार्यक्रम में गाना कौन सा सुनेंगे?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बातें बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी अच्छा लग रहा है। अब गाना बता दीजिए, आज कौन सा गाना सुनेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन और गाने के बोले सोना कितना सोना।
0: आपकी फरमाइश पूरी करते हैं फिल्म हीरो नंबर

श्रोताओं, और अब जानकारी के तहत बात करते हैं वन्य जीव अधिनियम 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। भारत सरकार द्वारा देश के वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों को संरक्षित करने के लिए पारित किया गया ये एक प्रमुख कानून है। इसका मुख्य उद्देश्य जानवरों के शिकार, अवैध व्यापार और तस्करी को रोककर पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन को सुरक्षित करना है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान और विशेषताएं इस प्रकार है। संरक्षित क्षेत्र, इसके तहत नेशनल पार्क्स, वन्य जीव अभयारण्यों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व बनाए जाते हैं। सख्त कानूनी सूचियों जैसे पौधों और जानवरों को सुरक्षा के स्तर के आधार पर 6 अलग अलग अनुसूचियों में बांटा गया है। अनुसूची 1 और 2, इनमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि जो जीव जंतु अब धरती पर नहीं है, इंडेंजर्ड हैं, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं, उनको रखा गया है। इन्हें कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है और शिकार करने पर सबसे सख्त दंड भी दिया जाता है। अनुसूची 3 और 4 के तहत इसमें सुरक्षित प्रजातियां शामिल हैं जिनका शिकार करने पर अपेक्षाकृत कम लेकिन सख्त दंड मिलता है। और अनुसूची 5, इसमें ऐसे जानवर जैसे चूहे, चमगादड़ आते हैं जिन्हें वर्मिन यानी पीड़क जंतु माना जाता है और इसका शिकार किया जा सकता है। चर्चा जारी रखेंगे, आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

बुलाना मुझे न बुलाना कि मार गता ना जमाना कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मार गता ना जमाना।

0: जय महाकाल, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम मैं शिवा लोहार, एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: विदिशा से बात हो रही है शिवा लोहार जी से? बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शिवा जी कैसे हैं और कामकाज कैसा चल रहा है?
1: मैम मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी बारिश चली हुई है।
0: बारिश हुई आपके उधर?
1: जी जी मैम, 2-3 दिन हो गए हैं बारिश हुई है मैम।
0: तो बारिश होना तो अच्छी बात है, और इन दिनों देखिए जो पूरा जुलाई का महीना है, इसको हम वन्य पहले सप्ताह को 1-7 तक वन्य जीव सप्ताह के रूप में भी मनाते हैं, है ना? वन्य जीव
1: संरक्षण
0: हमने अभी बात भी की थी, तो ये सबको राहत मिल जाती है। गर्मी और उमस के बाद जब बारिश होती है तो सबको राहत मिलती है, पर इसमें छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना होगा, अपनी सेहत भी, और पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने दे जहां भी। वैसे तो बारिश हो रही होगी, पर यदि नाले साफ होंगे, आप कचरे का सही प्रबंधन करेंगे तो साफ सफाई का ध्यान रखते हुए बारिश का मजा ले सकते हैं। और
1: बिल्कुल मैम, डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर भी नहीं बनाते।
0: सफाई से तो देखिए, तभी तो हम हमेशा सफाई की बात हम लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए तो घर में साफ सफाई कर लेंगे इससे बात नहीं बनेगी। यदि बाहर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो मच्छर के लार्वा उसमें होंगे ही, और बीमारी तो आएगी। जब ये वो तो देख के नहीं आती, इनके पास जाना है उनके पास नहीं। कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हुआ, चाहे आप गलत खान पान है या पानी गंदा पी लेते हैं, तो इन दिनों बहुत बचाव करके रहना अच्छा होगा।
1: बॉइल करके पानी पी तो अच्छा है।
0: सबसे अच्छी बात आपने बता दी कि बॉइल करके सारे जर्म्स जो भी होगा सब खत्म हो जाएगा, पानी गर्म करके ठंडा करके पिए।
1: तो तभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दिनों में अगर आप पानी यूज करते हैं
0: जी,
1: तो कृपया करके बॉइल करके पीने चाहिए।
0: सही कहा आपने।
1: और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने घर को साफ कर लेते हैं और अगल बगल में कर देते हैं, पर वो जिम्मेदारी भी एक ही सफाई कर्मचारी पास है, अपना काम कर ही रहा है, पर अपना भी कोई दायित्व बनता है।
0: तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सबका फर्ज, सब मतलब सबका दायित्व है ये कि आप साफ सफाई बाहर अपने आस पड़ोस में भी रखे, और कहीं भी पानी आपको दिख रहा है कि ये मत सोचिए कि वो नगर परिषद या सरकारी कोई टैप है, बह रहा है तो बहने दीजिए, आप उसको रोकने की को कम से कम बंद तो कर सकते हैं। खराब है
1: जी, बिल्कुल
0: सूचित कर सकते हैं, और ये एक जागरूक नागरिक की निशानी है। यदि आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो वातावरण भी शुद्ध होगा और आप हम सभी रोग मुक्त रहेंगे। अब आपकी पसंद का गाना कौन सा गाना सुनेंगे आज शिवा?
1: मैम मूवी का नाम है अंदाज, उसमें एक गाना है आएगा मजा बरसात।
0: तो आपने बरसात से ही रिलेटेड सॉन्ग सेलेक्ट किया, बहुत अच्छी पसंद है आपकी। सुनिए अपनी पसंद का गीत फिल्म अंदाज से। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो
1: हेलो संध्या जी,
0: हेलो।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन से श्रोता जुड़े हैं नमस्ते कुरुक्षेत्र कार्यक्रम से? आवाज तो पहचानी हुई लग रही है।
1: हाँ जी बिल्कुल, अशोक कुमार भारद्वाज।
0: अशोक कुमार भारद्वाज जी बात कर रहे हैं कॉल कैथल से। अशोक जी कैसे हैं? और आप तो सभी कार्यक्रमों से लगभग जुड़े होते हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, सुबह भी सुनते हैं और आपकी मतलब
0: अभी तो बात ही हो रही है हमारी, क्या बात है, है ना?
1: हाँ जी नमस्ते
0: जी।
1: और जैसे वातावरण,
0: जिससे वातावरण शुद्ध हो, और ये जो सिर्फ एक नारा बन के ना रहे, सभी लोग एक पेड़, एक क्या काफी पेड़ आपने भी लगा रखा होगा, और सब लगाते हैं, और यदि लगाए तो उनकी देखरेख करने की भी जिम्मेवारी लीजिए, और अपने वातावरण के संरक्षण में सभी का योगदान जो है इस तरह बना रहेगा, यही संदेश है आपकी तरफ से सभी श्रोताओं को। और अब अशोक जी, आपकी पसंद का गाना आज कौन सा गाना सुनेंगे? आज का अर्जुन फिल्म से गीत आपको सुनवाते हैं, और आपने पसंद किया है, गीत के बोल हैं गोरी हैं कलाइया, तो आपकी फरमाइश पूरी के देते हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग दीदी, आपको और सभी सुनने वाले को भी गुड
0: वेरी
1: मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? इतनी प्यारी आवाज
1: मैं सोनितपुर
0: में।
1: असम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ। सोनितपुर असम
0: सोनीतपुर
1: डांगा पर
0: आसाम
1: असम।
0: से बात हो रही है अमल जी से।
1: जी जी
0: अमल
1: जी
0: जी,
1: बहुत
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और
1: बहुत
0: फिर
1: धन्यवाद आपको भी कॉल को
0: बहुत
1: शामिल करने के
0: अच्छा
1: लिए।
0: लगा आपसे बात करके। आपने कितने दिनों बाद फोन कॉल मिलाई?
1: तो मैं 11 दिन के बाद फोन आया है फिर से।
0: 13 दिन के बाद तो थोड़ा बहुत ध्यान तो आपने रख ही लिया है ना।

0: रखना चाहिए
1: जी जी। कभी 15 दिन के बाद कॉल करते हो, कभी 11-12 दिन के बाद कॉल करते हो।
0: हाँ, कोशिश कीजिए कि कम से कम 15 दिन का गैप तो जरूर हो, जिससे सबको मौका मिल जाए। और
1: जी, जी,
0: में
1: जी,
0: आपके यहाँ मौसम कैसा है? बढ़िया है।
1: मौसम तो बहुत गर्मी है, बारिश ज्यादा सुनने आ रहा है, बहुत धूप दे रहा है। 41 डिग्री सेल्सियस है। आप
0: 41 तो फिर ज्यादा हो गया है ना, और गर्मी में तो फिर, और आप तो उस इलाके में इस टाइम
1: गर्मी में बचने के लिए हमें नींबू के पानी पीते हैं और पेड़ के नीचे बैठते हो,
0: तो मतलब पेड़ बहुत जरूरी है। बात यही कहलवाना चाह रहे थे कि पेड़ के नीचे बैठते हैं। अभी आप जहाँ भी है,
1: हाँ, पेड़ के नीचे बैठ के प्रोग्राम अच्छे से सुन रहा हूँ
0: और
1: पत्थर में जाके आया है।
0: गर्मी और उमस से राहत मिल जाती है यदि आप पेड़ के नीचे।
1: जी जी जी, राहत मिल जाता है। और मेरे हाथ में तो हाथ पंखा हर रोज रहता है।
0: हाथ वाला पंखा आप रखते हैं अभी भी?
1: जी जी, हर रोज रहते हैं। और बाहर निकलते तो पता नहीं कि बिना तो मैं बाहर निकल नहीं सकता।
0: ये तो बहुत अच्छी
1: और
0: बात
1: साथ में
0: है।
1: पानी की बोतल भी ले चलते हो,
0: पानी की बोतल और हाथ वाला पंखा। आप तो लोग भूलते जा रहे हैं, अब तो वो सजावट के लिए छोटा सा रखते हैं घर।
1: नहीं नहीं, जरूरी होता है गर्मी में, हाथ पंखा तो लगता ही रहता है।
0: हाथ पंखा बहुत जरूरी है और वो होना चाहिए। और देखिए, आपके पास यदि अपनी सारी चीजें हैं तो आप प्रकृति चाहे।
1: मैं हाथ पंखा बना के दूसरों को भी देते हैं बना के।
0: आप बनाते भी हैं
1: जी? हाथ पंखा बना के बेचते हो और बांसुरी बना के बेचते हो।
0: तो आप ये हस्तशिल्प का काम भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका अपना हुनर है तो इसको बनाए रखिए। और सभी से यही अनुरोध है कि जिसको भी मौका मिले और आसाम के स्टॉल जिस किसी देश में कहीं भी किसी भी ओकेजन पे लगते हैं तो जरूर खरीदिए। हम तो यही गुजारिश कर सकते हैं और आपका काम अच्छा चले यही शुभकामना देते हैं आपको। ठीक है, और अब आपकी पसंद का गीत, आज गाना कौन सा सुना है?
1: अनारी फिल्म का गाना है, प्यार में दिल दिया मैंने तुझको दिल जाने, और मैं दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: जी, नाम लीजिए।
1: मेरा दोस्त है भाईकोन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रमेश पत्र, सुगेंद्र रोंगटी, और हमारे तानुश्री है, और भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, लकेंद्र वर्मा, और गंगाधर सावनकर जी, प्रेम सिंह सरसदिया, और केसरी सिंह राजपूत, राकेश पूरन वर्मा, और दिल्ली से है धर्मवीर, और पूनम, पूर्णिमा और अंजलि को डेडिकेट है।
0: कितने सारे दोस्त हैं आपके? सभी दोस्त?
1: जी जी, इतने सारे दोस्त ऐसे की आकाशवाणी हेलो फॉर्मेट सेक्टर ग्रुप में जुड़ गया ना, ऐसे के सारे प्रोग्राम के बारे में पता चल गया। और
0: सभी दोस्तों का ख्याल किया और सबकी बात भी हो गई, सबका
1: जी बातचीत भी हो रहा है फोन के फोन से।
0: चलिए, अब आपकी फरमाइश पूरी किए देते हैं, सुनिए अपनी पसंद का गीत फिल्म अनाड़ी से।
1: थैंक यू।

0: प्यारे की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान, अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

0: कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अब दर्द नहीं, जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र। FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: रंग तरंग
1: नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई इस गजल से।

लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वरों में आप सुन रहे थे मुरली मनोहर स्वरूप का लिखा ये गीत। संगीत भी मुरली मनोहर स्वरूप का था। एल्बम का नाम था वर्षा ऋतु।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाजें पेश है।

0: छाया गांगुली की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडस टैग जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकायचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकायची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारागार में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी

0: के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: मिलो न तुम तो हम।
0: फिल्म है हीर राजा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. होटल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में इंदिवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, विविध भारती पर रोजाना दिन में 1 बजे आप सुनते हैं सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता सोशल मीडिया का हाथ पकड़ कर तय करते हैं एक सुरीला सफर। जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये खास जानकारी है। सुरीले गाने, दिलचस्प पहेलियाँ और बहुत सारी बातें। हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा तो इस बात में ही है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। आज वैसे हमारी लिस्ट मैच कर रही है, क्योंकि हम विविध भारती के फेसबुक पेज पर सैर कर रहे हैं इस समय। तो ध्यान से आप पढ़ लीजिए आज की इबारत, हम पढ़कर सुना देते हैं। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थीं और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिर आए बदरा सवरिया जोड़ लीजिएगा। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। निगाहें मस्ताना से कौन सा गाना याद आया? देव आनंद वाला वो गाना याद आया जिसमें नूतन भी है और साइकिल पे चले जा रहे हैं। कौन सा है, फिल्म याद कीजिए। वैसे हमें तो याद है, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया लिखिए फटाफट विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अभी हम जाकर वहाँ पढ़ेंगे। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल लग गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे। यहाँ कौन सा गाना याद आया? मुझे लगता है आप सबको वही गाना याद आया होगा जो मैंने चुना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। फिर लगी लगन ऐसी गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। यहाँ पर बहुत ही मशहूर गाना आप विविध भारती से अक्सर सुनते हैं, याद आ गया होगा। कौन सा है जरा बताइएगा। इस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से मैंने रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंग में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। उसी के लिए भी बहुत सारे गाने हैं, बताइए आप। तो कौन से गाने हो सकते हैं और कौन से वो शब्द हैं जिन पर गाने आपने चुने हैं, और आपको क्या लगता है इन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे? तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला, लेकिन उससे पहले हम ज़रा आपको याद दिला दें, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आज जाने माने अभिनेता राजकुमार की याद का दिन है। कुछ गाने उनकी याद को भी समर्पित हैं। तो बताइए उनकी कौन सी फिल्म आपकी बेहद पसंदीदा फिल्में हैं? और हाँ, झूला, सावन, घटा, बादल कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके लिए हमारे श्रोता टिप्पणी कर चुके हैं और आप सब ने गाने भी लिखे हैं, तो इबारत भी लिखी है बहुत सारे लोगों ने। तो आप भी इबारत लिख सकते हैं, झूला, सावन, घटा, बादल, जो भी शब्द आज की इबारत में शामिल किए हैं, और साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। हाँ, साथ में ये भी साझा कीजिए, झूले वाली कौन सी यादें हैं, झूले की पींग वाली कौन सी यादें हैं, और झूला कौन से पेड़ पर अब लगता है, डाला जाता है? पहले तो नीम का पेड़ होता था, मजबूत पेड़ कि टूटने का डर नहीं होता था, लेकिन अब बड़े कमज़ोर तने वाले पेड़ हैं आसपास। तो नीम का पेड़ पता नहीं आपके इर्द गिर्द है भी कि नहीं। वैसे गांव में अभी भी ये परंपरा है कि सावन आने से पहले ही झूले डाल दिए जाते हैं। तो सावन की याद महिलाएँ खासतौर से, ससुराल में पहला सावन कैसा था, तो आप यादें साझा कीजिए, हम सुनवा रहे।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के शुरू होने के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर के श्रद्धालुओं के नाम एक विशेष पत्र लिखकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि बाबा

0: बर्फानी के दर्शन हर शिव भक्त के लिए सौभाग्य का विषय है और ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन परंपरा का भी जीवंत प्रतीक है। श्रद्धालुओं के लिए एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा को सुरक्षित और यादगार बनाने के लिए 5 महत्वपूर्ण संकल्प लेने का आग्रह किया है। इन संकल्पों में उन्होंने प्रमुख रूप से स्वच्छता बनाए रखने, सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने, वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने और सदैव राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने यात्रा के सफल संचालन के लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, सुरक्षा बलों और सभी स्वयं सेवकों के योगदान की भी सराहना की। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। हरियाणा के सिरसा जिले में पैदा होने वाले रसीले और स्वादिष्ट किन्नू को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है। राज्य के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि ये कृषि में हरियाणा का पहला स्वतंत्र जीआई टैग है। इससे पहले हरियाणा को बासमती चावल और फुलकारी के लिए अन्य राज्यों के साथ संयुक्त जीआई टैग मिले हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे गौरवमयी क्षण बताते हुए कहा कि यह सम्मान क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान दिलाएगा और उनके उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि जीआई टैग मिलने से अब केवल सिरसा के निर्धारित मानकों पर उगे किन्नू को ही आधिकारिक रूप से सिरसा किन्नू के नाम से बेचा जा सकेगा। इससे बाजार में नकली उत्पादों और गलत ब्रांडिंग पर पूरी तरह रोक लगेगी। इसके अलावा इस प्रमाण पत्र से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिरसा के किन्नू की साख बढ़ेगी और किसानों को सीधा निर्यात करने के अवसर मिलेंगे। उल्लेखनीय है कि अकेले सिरसा जिले का राज्य में कुल किन्नू उत्पादन में लगभग 55% का योगदान है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ साथ हरियाणा सरकार द्वारा बागवानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिरसा के वीटा दुग्ध संयंत्र परिसर में लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में राज्य में 25 नए बुनियाद केंद्र खोलने और कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर देने की घोषणा की।
1: ये घोषणा भी करता हूँ कि 103 जो ऑनलाइन सेंटर हैं, इसमें 25 सेंटर और जोड़े जाएंगे। ये 125 सेंटर हो जाएंगे जो बुनियाद के तहत खोले जाएंगे। बच्चों को डिजिटल शिक्षा वो बेहतर तरीके से मिल सके कि वहाँ पर कंप्यूटर लाइब्रेरी हो। मैं इसके लिए जो कुरुक्षेत्र सेंटर है जहाँ से आप निकल करके आए हैं, उस सुपर 100 सेंटर्स के अंदर 100 कंप्यूटर देने की मैं घोषणा करता हूँ।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों ने आईआईटी जेईई जैसी कठिन परीक्षा पास कर ये साबित कर दिया है कि संकल्प और मेहनत से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से सफल बेटियों को प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। नू जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तेजी से जारी है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों के वितरण, डिजिटलीकरण तथा सत्यापन का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि जिले में कुल 6,59,697 मतदाता हैं तथा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 100% गणना प्रपत्र डाउनलोड एवं प्रिंट किए जा चुके हैं। अब तक 6,45,323 गणना पपत्रों का वितरण किया जा चुका है, जो कुल गणना पपत्रों का 97.82% है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: इस तरह लिखा है, बहुत सारे गाने लिखे, क्या करें हम, कौन सा वाला गाना सुनवाएं, कौन सा छोड़ें। लेकिन आज खास बात यह है कि आपकी लिस्ट में जो गाने हैं हमारी लिस्ट में भी है।
3: वाले तेरा जवाब नहीं।
2: गीतकार का नाम जरा बताइए।
3: तेरा जवाब नहीं।
2: संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं तो बताइए।

घराना फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अंबाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नजारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी

प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे हम मौसम से बिंधे मन लिए घूमते हैं, आंखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसे ऋतु वैसा मन और वैसे ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो कौन है हीरोइन।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नजारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है। लेकिन हाँ, खतरा भी होता है, इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठे और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो खतरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी जमीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है। भीगी हवाएं होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है जहां प्रकृति संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं। जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का

रंग ऐसा है जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो जरूर साझा कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर ये झूले वाला है गीत, बहू बेगम फिल्म। बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा। लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। बूझिए हीरोइन का नाम और गीतकार का नाम। तुम है बहू बेगम,

बेगम फिल्म का गाना था लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है और हीरोइन का नाम पूछा था, वो भी अभी हमें नहीं मिला है। तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार जरूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊंचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं, और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी, बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया, मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया, तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी की ये नाता जन्म जन्म का बन गया, अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है। बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में, हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे, औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़े और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जाए घिर आए, कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब, अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है, लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियां आ रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं, जरा संक्षेप में लिखिए तो ज्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में, आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और कोई खास याद है, कोई खास बात है तो जरूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़े। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है। और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मजा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो जरा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।

0: सितना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था, इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफर के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे, लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी है तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने

इनसे मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई खास बात। संगीतकार का नाम जरा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई खास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है। संगीतकार मदन मोहन, और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है, और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। जरा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी

बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसासात कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ, तो दोस्तों हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और जरा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां की बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज्यादा हो गया था। तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है। राजस्थान का खाली नहर और बारिश होने पर नहर भरे, वहां के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, जरा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम। देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे 6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहें जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: आंखों से उजाले ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले कर दे ओ गोदी जरा आंखों से उजाले
1: आंखों का उजाला पर दिसले।
2: फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
3: Good afternoon, this is Akashwani and I am Valsa Williams with the

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।

0: अवस्था में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
1: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
0: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
3: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेस ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या

0: लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कारकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कारकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के

0: अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकिजा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कैफ भोपाली के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरी गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बहारें खिली गलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है, फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

नूर महल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, मनुष्य स्वभाव से हमेशा सुख की कामना करता है और दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि बिना दुख का अनुभव किए सुख के वास्तविक आनंद को समझा ही नहीं जा सकता। तपती धूप में चलने के बाद ही पेड़ की ठंडी छांव का असली सुख मिलता है। उसी तरह जीवन की कठिनाइयों और दुख से गुजरने के बाद जब सुख का आगमन होता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। सुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन का आनंद लेना सिखाता है, जबकि दुख एक मार्गदर्शक है जो हमें भीतर से मजबूत और समझदार बनाता है। तो सुख और दुख की लहरें लिए उसमें गोता खाते हुए आज अपनी सहेलियों से इन्हीं यादों इन्हीं बातों को साझा करने के लिए विविध भारती की स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हैं आप?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताइए आज किस सखी से बात हो रही है हमारी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है हर्षा खन्ना, वैसे बॉम्बे से हूँ, आजकल मैं अजमेर आई हुई अपने ससुराल, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा फोन लगा है आपको।
0: क्या बात है, तो बताइए हर्षा जी क्या करती हैं आप?
1: देखिए वैसे तो मैं हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मैं ट्यूटर भी हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ और मैं ट्रांसलेटर भी हूँ। मैं इंग्लिश हिंदी मराठी में ट्रांसलेशन करती हूँ।
0: जी, ये तो एक बिल्कुल अलग तरीके का काम हो गया। ये उन्हीं के लिए संभव है जो ये दो तीन भाषाओं को बहुत अच्छे से लिख पढ़ सकता है ना?
1: जी जी।
0: तो ये किस तरह से आपने ये सोचा कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए?
1: मुझे ना वैसे भी शब्दों से बहुत प्यार है, और आपको पता है जो हमारा भारत है वो एक बहुत सारी भाषाओं का देश है।
0: जी,
1: तो जैसे मैं खुद दिल्ली से हूँ, मेरी शादी जिनसे हुई है वो राजस्थान से है, बॉम्बे में रही हूँ, गुजरात के पास है, तो मैं काफी सारी भाषाएं बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
0: जी जी।
1: इसी तरह से मुझे किसी ने एक बार कहा था कि प्लीज सर मुझे कुछ ट्रांसलेशन चाहिए, तो इंग्लिश हिंदी करते करते मैंने मराठी भी शुरू किया।
0: जी।
1: तो मराठी टू हिंदी इंग्लिश भी करती हूँ मैं।
0: जी, रेडियो सुनना पसंद करती हैं आप?
1: रेडियो ने तो मतलब बचपन से लेकर अब तक हमें वो रखा है कनेक्टेड सारी दुनिया से, खुशी में भी दुख में भी यही याद आता है।
0: बिल्कुल, और यही सवाल भी मैं आपको करना चाह रही थी कि सुख और दुख को आप कैसे देखती हैं?
1: देखिए अगर फिलोसफिकल इससे कहा जाए तो सुख और दुख जो है वो रात और दिन की तरह है, एक के बाद दूसरा आता ही है, और आपके नजरिए पे भी डिपेंड करता है आपका नजरिया क्या है। आप महलों में भी दुखी हो सकते हैं और झोपड़े में भी सुखी हो सकते हैं।
0: ये तो बहुत सटीक बात की आपने, और हर वक्त जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको खुशी खुशी अपनाना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पॉजिटिव नजरिया रखते हुए हर्षा जी बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे? हमें बेहद खुशी है आपसे बात।
1: मुझे ना फिल्म खिलौना का एक गीत जो है सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए,
0: जी
1: वो मैं सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आलिया बानो हो रही हूँ, गुजरात से।
0: आलिया बानो गुजरात से?
1: हाँ
0: जी। आलिया बानो कैसी हैं आप?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: टंकी नवाते पड़ती हूँ, घर पर ही रहती हूँ, घर के जो काम होते हैं ना छोटे मोटे वो सब करवा देती हूँ।
0: तो कभी ऐसे बाहर जाना होता है कहीं घूमने फिरने, आप परिवार के साथ भी जाती हैं?
1: हाँ जाती हूँ ना परिवार के साथ ही।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: लेकिन मेरा हाथ पकड़ना पड़ता है।
0: हाँ वो तो है
1: ना।
0: जी जी, ये तो सहयोग परिवार का मिलता ही होगा आपको। और ये मुझे जी,
1: मेरी अम्मी है, मेरी दीदी है, मेरी दीदी है ना, मेरी अम्मी, वो मेरा बहुत साथ देती है, मेरा हाथ पकड़ती है मुझे सत्यकाल, मतलब घर में तो मैं खुद ही चल लेती हूँ, मुझे वॉशरूम मालूम है, सब मालूम है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, मैं घर का तो सब जानती हूँ, लेकिन बाहर कहीं जाना होता है ना तो मुझे ये लोग हेल्प कर देते हैं।
0: जी बहुत अच्छी बात है। तो जब आप घर में चलना फिरना कुछ काम करना होता है तो आप कैसे अंदाजा लगाती हैं, यानी कि आप कदम गिन लेती हैं या आपको एक रोजमर्रा में आपको एक अंदाज हो गया है कि भाई बाएं तरफ ये है दाएं तरफ ये है, किस तरह से कर पाती हैं आप?
1: नहीं मुझे तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मैं रहती हूँ ना तो मुझे अंदाजा हो गया है कि किस तरफ क्या है, मतलब आना जाना होता है ना मेरा। अभी जैसे कि आपसे जो बात कर रही हूँ ना
0: जी।

0: ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ। अच्छा। हमारा एक वाले का घर है ना, वहाँ कर रही हूँ
1: जी।
0: तो मैं नीचे से यहाँ भी आ जाती हूँ।
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर पाती हैं ये सब?
0: आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे ऐसा अंदाजा हो जाए ना किस तरह जाना है, किस तरह से आना है, किस तरह आना है, तो मैं अपने आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं। आप इसको किस तरह से लेती हैं?
0: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। वैसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ, लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ सहेलियों के साथ घूमती है तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। लेकिन फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती।
1: देखिए
0: सोचती हूँ ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ले लेना चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। आपकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर जिंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का।
1: अंदाज फिल्म का
0: है ना
1: जी?
0: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लगा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है। जी। तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या बात है।
1: शायरा हूँ।
0: जी
1: एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरें कशिश, मेरा पेन नेम है लहरें।
0: पेन नेम है आपका लहरें?
1: लहरें। और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरें कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी।
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी शुरू में, चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई बढ़ती गई तो थोड़ी और ज्यादा कविता में शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मेरा कलम, ये सब कुछ है। तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है। और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय एक जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं।
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल सुनाइए।
1: उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हो, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुँचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यूं दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे ये नहरों में कई भंवर, पर साहिल तू ही किनारा भी तुझमें, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हर दम, नींद ही तो टूटती है हर दम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत। हमें उम्मीद है कि जितनी भी

0: हमारी सखियां सुन रही हैं, उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी और एक प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, इसका ये गाना है न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: Thank you.
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली
1: जी, अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है, मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
1: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
2: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
1: अच्छा, यानी टिफिन सर्विस।
2: हाँ, घर में खाना बनाने को जाती मैं, रोटी ही बनाती सिर्फ। चार पांच घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
1: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे जाके
2: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती।
1: अच्छा।
2: फिर बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
1: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती हैं कि आप जाकर
2: करने वाले हैं ना यहाँ पे।
1: जी,
2: टीचर है तो टीचर क्या ही सब काम करती हूँ।
1: जी, और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो जाती हैं। जी
2: हाँ, बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
1: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीजों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
2: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
1: जी
2: उतनी कमाते, बस ज्यादा करके भी अपने तब

0: अब बताइए सुनीता जी कि आप हाँ, कौन सा हाँ। गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था,

0: आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना।
1: मुझे बहुत तसल्ली ले रही है और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: जी हम आपकी खुशी
1: बयान नहीं कर सकती।
0: जी आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी। सुशीला जी कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद है आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: और पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, ईयर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हमारी जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में तारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन से सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: सेवेंथ
0: की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी, मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो हाँ। सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती हैं? क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ, हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा।
1: हाँ।
0: तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर।
1: और उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ, मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी।
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी।
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, हाँ, ठीक है। तो मेरा मानना है, हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
0: जी।
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा
0: जी। यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्धर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं
0: जी। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर ही रहते हैं कुछ
0: जी। हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना? जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैम मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है?
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से, सुनती रहती, काम भी करती है।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी जी
0: जी। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए निकाह पिक्चर का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगली 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदि थी, वो इसे जानती थी। वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जाती। वो अलबेली, अल्हड़, चुलबुली और अपनी ही धुन

की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहां तक एक पगडंडी पहुंचती थी। यहां लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में जरूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीजें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिला कर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती है। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थी। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी

नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहां वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहां मुंह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आंच होती है।

नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियां जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाते।

आते, तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास। भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती, शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजर कर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला, फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा, इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा, रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक।

प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई, तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे। दोनों अनमन

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले।

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहां जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को खत्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब? कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है। कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में

बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़ी ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है। प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी खत्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का खजाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी, उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती। वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे। ये रात

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना, ये बुत नहीं है,

लालच की औरत है इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज में दर्द था, उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था, ऐसा गीत ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है, सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो, वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका, प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ, आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहां आया और प्रेम लेकर चला गया, फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतजार करती रही। इंतजार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

0: क्या वो उसे भूल गया?
1: नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया।
0: किस्सा? कैसा किस्सा?
1: एक रात नदी के तट पर ठीक यहीं वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहां इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वही दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं। वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई मां अपनी बेटी को यह किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे

सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान सब तरफ देखा ढूंढा पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? मतलब कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत होता ही है और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली। अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपने राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहां नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह औरोह सब भूलने लगे। वहां और भी अप्सराएं थीं लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रही फिर कहानी में लौट आई जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूं। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी

ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी, उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछुओं की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछुओं में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर जरूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

0: नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय खत्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने।

0: की बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए।
2: अभी आप सुन रही थी विविध भारती की कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

गीता संदेश कार्यक्रम का समय रहेगा सायं 6:20 से। आज अध्याय 7 से श्लोक 27-30 की व्याख्या होगी। व्याख्याकार रहेंगे डॉक्टर नितिन कुमार।

युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर हाजिर होंगे साय 5:30 से। अब से कुछ ही पलों में कार्यक्रम गाने नए पुराने ठीक 5:05 से।

किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम अन्नदाता लेकर हाजिर होंगे साएं ठीक 6:30 और इसके साथ हमारा कार्यक्रम ग्राम संसार ठीक 7:00।

संगीत के आकर्षण इस प्रकार से रहेंगे। सैनिकों के लिए समर्पित कार्यक्रम जय जवान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30 से। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता लेकर हाजिर होंगे आपके लिए 7:45 पर। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जी हां साथियों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आपके लिए पेश करेंगे 8:00 से। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें कार्यक्रम का समय रहेगा 10:00।

हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सायं 6 बजे 6:08 पर, रात्रि 11 बजे अंग्रेजी में समाचार सायं 6:05 पर, रात्रि 9 बजे व रात्रि 11:05 पर, प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। इंतजार कीजिए, कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे आपके लिए कार्यक्रम गाने नए पुराने।

आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के सायंकालीन सत्र के इस पहले कार्यक्रम गाने नए पुराने सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त संत कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हिंदी फिल्म संगीत की एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर दौर अपने साथ नई धुनें, नए एहसास लेकर आता है, जबकि पुराने गीत आज भी दिल की गहराइयों में उसी मिठास के साथ बसे हैं। आज के संगीत सफर में हम सुनेंगे नए और पुराने दौर के ऐसे गीत जो प्रेम, अपनापन, उत्साह और जीवन के विभिन्न रंगों को खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

जी हाँ श्रोताओ, रिश्तों के रंग जब प्रेम की रोशनी में खिलते हैं तो जीवन भी सतरंगा दिखाई देने लगता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अब चलते हैं सुनहरे दौर की ओर।

0: जी हाँ श्रोताओ,
1: पुराने गीतों की सादगी, मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले बोल आज भी श्रोताओं को उसी तरह आकर्षित करते हैं

साथियों, जीवन में खुशियां तभी बढ़ती हैं जब हम उन्हें अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। और जो हमारे सदाबहार गीत हैं उनमें इसी सकारात्मक भाव की ऊर्जा हमें सुनाई देती है।

0: जी हाँ श्रोताओ,
1: सचमुच संगीत दूरियों को मिटाकर दिलों को करीब ले आता है। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं एक चुलबुला और मनोरंजक नया गीत आप सभी श्रोताओं के लिए।

तो श्रोताओ, नए और पुराने गीतों की इस सुरीली महफिल में आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए श्रोताओं, सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी विशाल के साथ।

युवाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को आपके दोस्त विशाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम कार्यक्रम में सुनवाएंगे आपकी फरमाइशी गीत। योगी कार्यक्रम का नाम है युवा फरमाइश और इसके साथ ही आपको कुछ रोजगार समाचार से भी अवगत कराएंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमें आई है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से। फरमाइश करता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत। आइए आप सभी श्रोताओं को सुनाए चलते हैं कि फरमाइश पर ये गीत।

0: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
1: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
0: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
2: आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है बागरी मोहल्ला जिला झालावाड़ राजस्थान से। फरमाइश करता है मनभावन शोभा कपिल नैना सत्यनारायण, आइए आप सभी को सुना चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: हर नारी की मुस्कान हमारी पहचान। पेनलेस डिलीवरी हो या गर्भावस्था जांच, महिलाओं से संबंधित हर समस्या का समाधान अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि जैन के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
2: आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है जमशेदपुर झारखंड से। फरमाइश करता है सिपाही देवेंद्र, राकेश, प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली और देबेन। आइए आप सभी श्रोताओं को सुनाए चलते हैं कि फरमाइश पर ये गीत है।

0: अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
1: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
0: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
1: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
0: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र।
1: 8708903436।
2: आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। फरमाइश

पता है, पप्पू राजा, संगीता, महक, सुनीता, आरजू, हसमुख लाल। आइए आपसे सभी श्रोताओं को सुना चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

आई श्रोताओं, आप सभी को अवगत कराए चलते हैं कुछ रोजगार व प्रवेश संबंधी सूचनाओं से। हरियाणा ग्रुप डी के आवेदन आरंभ हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 42 वर्ष मांगी गई है। इसके साथ ही आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में टेक्नीशियन के कुल 6,657 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष मांगी गई है।

तो दोस्तों ये थी कुछ रोजगार समाचार। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। फरमाइश करता है तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा। आइए आप सभी श्रोताओं को सुनाए चलते हैं यो फरमाइश का ये अंतिम गीत है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। साय के 6 बजने को हैं। समय है हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। वे प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया।

0: सोलहवें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The government has reiterated that the Indus Waters Treaty remains in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said India's position on the Indus Waters Treaty is consistent. He said Pakistan must credibly and irrevocably renounce its support for cross-border terrorism. On Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project, Mr. Jaiswal said India's development assistance for projects in Bangladesh is based on a mutually agreed roadmap and is regularly reviewed. The Defence Acquisition Council has approved capital acquisition proposals worth 52,000 crore rupees to enhance combat readiness of defence forces. The proposals for which approval has been given include procurement of anti-unmanned aerial vehicles, electronic warfare system Akash Tarang, man-portable anti-tank guided missile systems, medium-range surface-to-air missile weapon system, very short-range air defense system, among others. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan has directed the constitution of a high-level expert committee under the Indian Council of Agricultural Research to examine the challenges being faced by Totapuri mango growers in Andhra Pradesh. The decision follows the Union Minister's recent visit to Andhra Pradesh, during which farmers informed the minister that prices of the Totapuri mango variety, which is cultivated extensively for the processing industry, have declined significantly in recent months. Mr. Chauhan said safeguarding the income and livelihoods of Totapuri mango growers is a priority for the government. The Ministry of Information and Broadcasting has directed the Broadcast Audience Research Council to stop publishing television ratings across both news and non-news genres until its license is renewed under the Television Ratings Policy 2026. The government has ordered the removal of the BAT BMS, Epoch Eye Iron and Lossigy apps from the Google Play Store and Apple App Store over security concerns. The action followed after allegations that the applications were being used to remotely disable e-vehicles, including e-rickshaws. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत के उद्योग संघ सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को विजन 2047 के लक्ष्यों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में अपनी ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की अनुमति दी। रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारियां तेज की। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हरियाणा ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया। और मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की। और अब खबरें विस्तार से। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माई भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माई भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा है कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
1: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को विजन 2047 के लक्ष्यों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में कृषि विभाग के आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर लागत कम कर और बेहतर बाजार उपलब्ध कराकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। बैठक में सेम प्रभावित भूमि को सेम मुक्त बनाने के अभियान की समीक्षा भी की गई। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों को अब आधार ऐप के माध्यम से सीधे आधार में अपनी ईमेल

0: एलआईडी जोड़ने या अपडेट करने की अनुमति दे दी है, जिससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ये सेवा केवल आधार ऐप के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध है, जो 1 जुलाई 2026 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगी। लोग अपने स्मार्टफोन पर ऐप खोलकर भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। आधार ऐप पर नई सेवा उपलब्ध होने के 2 दिनों के भीतर ही 2,50,000 से अधिक लोगों ने अपना ईमेल पता अपडेट कर लिया है। रेलवे ने देश की पहली अत्याधुनिक और प्रदूषण मुक्त हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में दिल्ली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पुष्पेश त्रिपाठी ने प्रशासनिक व रेलवे अधिकारियों के साथ जींद जंक्शन का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर, हाइड्रोजन संयंत्र और स्टेडियम स्थित हेलीपैड का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री पुष्पेश त्रिपाठी ने बताया कि सोनीपत जींद मार्ग पर हाइड्रोजन ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया जा चुका है, जबकि दिल्ली सोनीपत और जींद दिल्ली जैसे अन्य ट्रैक पर भी परीक्षण जारी है।
1: अभी ट्रायल काफी एडवांस स्टेज पे है, फिर ट्रायल सोनीपत से जिन सेक्शन में हो गया, बाकी सेक्शंस में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ट्रायल जल्दी जल्दी खत्म कर लें, और ट्रायल जैसी सफलतापूर्वक हो जाएंगे तो अप्रूवल मिलने के बाद से गाड़ी का परिचालन करना शुरू करेंगे।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में हरियाणा ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राज्य को 100 में से 95.21 अंक मिले हैं। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना आधुनिक, तकनीक आधारित और नागरिक केंद्रित न्याय व्यवस्था की तरफ एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का पहला स्थान मिलना बेहतर योजना, गहन प्रशिक्षण और हर पुलिस अधिकारी की मेहनत का नतीजा है। पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक भारी बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच मॉनसून के आगमन के बाद हुई वर्षा से अधिकतम तापमान में गिरावट से लोगों को लू की स्थिति से कुछ राहत मिली है। हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 14 के लेबर चौक पर क्रम में श्रम टोकन आधारित लेबर चौक प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये पहल श्रमिकों को सम्मान, समान अवसर और पारदर्शी रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री गोयल ने कहा कि अब लेबर चौक पर कार्य आवंटन टोकन के आधार पर व्यवस्थित ढंग से होगा।
2: और चौक से 50 लेबर या 250 लेबर आज के दिन जाती है तो क्रम से जाए, 250 लोगों को रोजगार मिल गया, अगले दिन जब आए तो कोई 50 रह गए थे, उनसे रोजगार शुरू होगा पर्ची के माध्यम से कि सभी लोगों को महीने के अंदर रोजगार मिल सके। उसके अलावा अक्सर ऐसा होता है हमारे मजदूर भाई आते हैं, महीने में काम करते हैं, कुछ लोग काम कराते हैं ठेकेदार और भगा देते, पैसे नहीं देते, हम ये भी व्यवस्था करेंगे। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके ले जाएगा, आपकी मजदूरी का एक एक पैसा उन्हें देना पड़ेगा।
0: श्री विपुल गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित इस प्रणाली से श्रमिकों का पंजीकरण, कार्य आवंटन और श्रम प्रबंधन डिजिटल एवं पारदर्शी होगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कल ली जाने वाली तृतीय स्तर की हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ ने बताया कि आज बोर्ड मुख्यालय से परीक्षा के प्रश्न पत्रों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी जिला मुख्यालयों के लिए रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि 73,091 अभ्यर्थी 238 केंद्रों पर ये परीक्षा देंगे। परीक्षा शाम 3 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होगी। बोर्ड ने सभी जिलों के प्रशासन, पुलिस विभाग एवं परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों से समन्वय बनाकर परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का आह्वान किया है। बोर्ड अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से भी बोर्ड द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉ

0: पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर 6 जुलाई को अंबाला छावनी में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे।
1: जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 6 तारीख को जयंती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस वक्त नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान नहीं रहेंगे। उन्होंने इसके विरोध में बिना परमिट कश्मीर जाने का फैसला किया। उन्होंने इस यात्रा के दौरान एक दिन अंबाला छावनी में एक जनसभा की, इसलिए अंबाला छावनी में बहुत बड़ी जनसभा की जा रही है, जिसको जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वो एड्रेस करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और प्रदेश की प्रधान भी आएगी और भी कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
0: कार्यक्रम का आयोजन सुबह 9 बजे सुभाष पार्क के सामने किया जाएगा। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित महारोजगार मेले का शुभारंभ किया। खेल राज्य मंत्री ने अपने जन्मदिन पर HBM ग्लोबल फाउंडेशन द्वारा संचालित एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई। ये एम्बुलेंस पलवल विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को 24 घंटे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी। इस अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रोजगार मेले को लेकर श्री गौरव गौतम ने कहा, जिला प्रशासन और जिला रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को विजन 2047 के लक्ष्यों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में अपनी ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की अनुमति दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर नितिन कुमार की। आज अध्याय 7 से श्लोक 27 से 30 की व्याख्या की जाएगी।
3: श्रोताओं नमस्कार, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 27 और उससे आगे की व्याख्या। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत मोह अर्थात अज्ञानता को प्राप्त होते हैं। मित्रों, इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि मनुष्य के कल्याणकारी मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु क्या है, वो राग और द्वेष है। इसी बात का स्पष्टीकरण भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 के 34वें श्लोक में पूर्व में कर चुके हैं, इंद्रस्य इंद्रस्यार्थे राग देशो व्यवस्थितो। और इसी अध्याय के फिर 37वें श्लोक में काम और क्रोध को भी मनुष्य का वैरी बताया गया है। यानी कि मनुष्य को यदि उत्कर्ष को प्राप्त करना है तो उसे इन चीज़ों का जो है परित्याग करना चाहिए, और यदि इन चीज़ों की प्राप्ति होगी तो व्यक्ति मोह को यानी कि अज्ञानता को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक के आरंभ की पंक्ति में आज के मनुष्यों को सचेत किया है कि आज प्रायः सभी जीव अपने आसपास के जीवों के उत्कर्ष आदि को देखकर उनसे राग द्वेष करके अपनी इच्छाओं की वृद्धि करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक पड़ोसी के पास इच्छाएँ ज़्यादा हो जाएँ तो हम क्या करते हैं, उनकी पूर्ति के लिए अनेकानेक अनर्गल कार्य करते हैं। जब वह पूर्ति नहीं होती तो हमें काम क्रोध इत्यादि आता है जो कि हमारे दुख का कारण बनता है। इसलिए अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए हमें राग द्वेष को छोड़ देना चाहिए। संसार की किसी भी जीव से या किसी भी विषय के प्रति हमें ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। आध्यात्मिक अर्थ की यदि श्लोक में व्याख्या की जाए तो वह मोह ही बंधन का कारण है। जब व्यक्ति क्या होता है, मोह, हम किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई कर्म करते हैं और वो जब हमारा पूर्ण नहीं होता है तो हमें फिर क्या होता है, दुख की प्राप्ति होती है, काश ये हो जाता तो अच्छा होता है। इसी बंधन के कारण मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। भगवान शंकराचार्य ने व्याख्या की है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो क्या करता है, इसी तरह आवागमन के चक्कर में मुक्त हो जाता है। परंतु जो श्रेष्ठ उदार व्यक्ति होता है उसके विषय में भगवान कहते हैं कि जब इन चीजों से दूर हो जाता है तो

व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये शाम त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां त्वे द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इस श्लोक में भगवान भक्त के लक्षण बताते हैं। भक्त होता है साधक, और भगवान जो होता है वो उसका लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जो कर्म होते हैं उसके साधन होते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे द्वंद्व और मोह से रहित होकर दृढ़ निश्चय से मुझे भजते हैं। पूर्व के श्लोक में बताया है कि ये द्वंद्व और मोह राग द्वेष जो है व्यक्ति के पतन का कारण यानी कि मोह का कारण बनते हैं, परंतु जो निष्काम होते हैं वही ज्ञानी लोग हैं जो यथार्थ स्वरूप को जान करके भगवान को जो है स्वेच्छा से भजते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, द्वंद्व मोह से रहित हो जाते हैं और अंत में वो भगवान को ही लक्ष्य मान करके यानी कि अपने कर्मों को करते हैं। इस श्लोक की पापों के नष्ट होने की चर्चा जो है भगवान ने की है। पापों के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है उससे सबसे पहले जानना हो। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पुण्यकर्मणाम, इस श्लोक की पहली पंक्ति का अंतिम पद है, पुण्यकर्मों का आचरण करने वाला होता है। अब पुण्यकर्म होते क्या है, पुण्यकर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं जो उपनिषद इत्यादि के में प्राप्त होते हैं। जैसे उपनिषद में कहता है सत्यम वदय, सत्य बोलो, धर्मम चरय, धर्म का आचरण करो, और किसी असहाय की सहायता करना, किसी से राग द्वेष इत्यादि न रखना, ऐसे असंख्य कर्म है जो पुण्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। जब मनुष्य ऐसे कर्मों को करता है तब उसका परिणाम यह होता है कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो वह पुण्य कर्म करता है, तब वह द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व और मोह से मुक्ति की यदि चर्चा की जाए तो कह सकते हैं कि सांसारिक दुख सुख आदि से कभी किसी भी अवस्था में चित्त के भीतर किसी भी प्रकार के विकार का न होना, इसी को द्वंद्व मोह निर्मुक्ता जो है कहा गया है इसी श्लोक में। यानी कि वह व्यक्ति द्वंद्व मोह से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसके मन में ये चीजें उत्पन्न नहीं होती। जो मनुष्य राग द्वेष से उत्पन्न होता है एवं हर्ष शोक इत्यादि से जो सर्वथा मुक्त हो गया है वही जीव मुक्त होता है, और ऐसा ही व्यक्ति जो है भगवान के परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इस श्लोक में दृढ़व्रता एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जो बड़े बड़े प्रलोभनों और विघ्नों के आने पर भी अपने भजन के द्वारा सबको निरस्त करके अपने श्रद्धा भक्ति युक्त विचारों और नियमों पर दृढ़ता पूर्वक अटल रहते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने कर्म से कभी विचलित नहीं होते, ऐसे जो कर्मवादी भक्त होते हैं वह दृढ़व्रती कहलाते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान का जो भजन करने वाले हैं वे भजन के प्रकार क्या है और वो फल कैसे प्राप्त करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य ययंतिये ते ब्रह्म तद्विदुहु कित्सनम अध्यात्म कर्म चाखिलम। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आकर के वृद्धावस्था तथा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म अर्थात ईश्वरीय सत्ता को, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान लेते हैं। अब देखिए तीन विषय कहे हैं, संपूर्ण अध्यात्म का ज्ञान, उस परब्रह्म ईश्वर का ज्ञान और संपूर्ण कर्म का रहस्य। ये तीनों देखिए, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म जो ईश्वरीय सत्ता है वो आपका साध्य है, ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान जो आपके साधन है, और ये जो कर्म है ये जो रहस्य हम जो करता है साधक वह जो है साधक कहलाता है। इस श्लोक में प्रथम पंक्ति में बात आई है कि जो मनुष्य वृद्धावस्था तथा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, परंतु हम सब जानते हैं कि यह तभी संभव होगा जब हमें इस जन्म से मुक्ति मिलेगी, यानी कि हमें कर्मों से मुक्ति, यानी कि हमारे लिए कोई निश्चित कर्म ना रह जाए, स्वभाव की कर्म बन जाए, वह हमारी मुक्ति होती है। और कर्म बंधन से मुक्ति के पश्चात वह वृद्धावस्था मृत्यु जन्म इत्यादि से जो है मुक्त हो जाता है, और तभी यह विषय संभव हो पाता है। कर्म बंधन से मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि जीव निष्ठापूर्वक भक्ति के द्वारा अपने अंदर के आसुरी स्वभाव जो काम क्रोध मद लोभ अहंकार हमारे भीतर भरे हुए हैं सबको नष्ट कर दे। मायाया हृत ज्ञान आसुरम भाव आश्रितम न प्रबद्यन्ते नराधमः। जो आसुर स्वभाव वाले हैं, पापी दृढ़ मनुष्य हैं, वो मुझको कभी नहीं बचते अर्थात मुझको प्राप्त नहीं करते। तुलसीदास जी ने भी इसी तरह का एक कोट अपने दोहे में किया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजो भजई जही संत। जब ये चीजें नष्ट हो जाती हैं तब जीव जो है ईश्वरीय सत्ता को भजता है।
अब इस श्लोक में जो है, जो अभी उच्च

0: अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है वह अधिभूत है। इससे पूर्व आठवें अध्याय में जिसे ब्रह्म कहा गया है वह हिरण्यगर्भ परमात्मा अधिदेव है और इसी अधिदेव को वेद में जो है हिरण्यगर्भ कहकर संबोधित और प्रजापति कहकर संबोधित किया गया। हिरण्यगर्भ है संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सराधार पृथ्विन्द्या मुते माम कस्मै देवाय हविखा विदिम। इस श्लोक में भगवान की सर्वसत्ता के विषय में बतलाया गया है। इस श्लोक में अधिभूत अधियज्ञ और अधिदेव की जो चर्चा की गई है वह सभी एक ही भगवान के स्वरूप हैं, वासुदेव सर्वम, जिसे कहा गया है, जिसे वेद में कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंति ही, वही एक परमात्मा अनेक रूपों में विभाजित हो जाता है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने गीता के सातवें अध्याय के श्लोक संख्या 27 से 30 तक की व्याख्या सुनी। गीता संदेश कार्यक्रम में सातवें अध्याय की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर नितिन कुमार की। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अनदाता सुनिए सब बण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अनदाता और इसमें भाइयों हम जो है ना खेती बाड़ी न लेकर बागवानी न लेकर सब्जियां न लेकर कई डाल की चर्चा जो है ना कर दे रहे हैं। पर भाई आज जो है ना थोड़ी सी बात न्यू करेंगे कि जो फलदार वृक्ष है ना भाई हमने उन्होंने एक तो किस तरह खाद देनी है, किस तरह उर्वरक देने हैं, इन बातों के ऊपर जिक्र करेंगे। क्योंकि भाई कुछ किसान भाई ने देखा है कि भाई चलो पौधा ला दिया और उसकी देखभाल करनी छोड़ दे, पर भाई ऐसा नहीं है। अगर आप जो है ना सही समय पर उसका जो है ना खाद पानी नहीं करोगे तो भाई उसकी बढ़वार नहीं होगी और पौधे भी भाई जो है ना अच्छे जो है ना फिर वो फल भी देंगे। तो इस करके भाई क्योंकि कुछ ऐसे पौधे भी हैं भाई जिनको जो है ना खाद ज्यादा जरूरत पड़ा है, क्योंकि भाई जो बड़े पेड़ हैं जिन किसान भाई है ना भाई पहले ही कई साल पहले का जिनका बाग लग रहा है उसके पेड़ तो देखो भाई बड़े होंगे, पर भाई जिनका छोटे पौधे हैं फलदार हैं उनके लिए थोड़ी सी खाद की कमी रहा है। पर भाई आज यही जिक्र कर रहे हैं कि जो भाई अधिकांश जो बड़े पौधे हैं वो सारा साल जो है ना खड़े रहे हैं, भाई जो उसके ऊपर फल भी लग दे रहे हैं और उनकी जो जड़ है वो भाई काफ़ी लंबी जो है ना हुआ है और काफ़ी जो है ना गहराई तक जावा है। इसके साथ साथ भाई कुछ पौधे जो है ना मौसमी है उसकी तुलना में उनको खाद की थोड़ी सी कमजोर तरह है, और लेकिन भाई जो किसान भाई हैं जिन्होंने बाग लगा रखे हैं उनकी खाद की जरूरत के अनुसार उनको दिन दे रहे हैं खाद को। फल वृक्षों की जो है ना अच्छी बढ़वार के लिए, अधिक उत्पादन के लिए भाई उन्हें समय पर जो है उन्हें पोषक तत्व संतुलित मात्रा में देना बड़ा जरूरी हो जाए, क्योंकि फल वृक्षों की भाई कई तरह की प्रजाति हैं तो इसलिए उनकी जो है ना मिट्टी भी उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की हुआ है और बारिश या आर्द्रता या भाई प्रकाश के प्रभाव से जो है ना प्रत्येक पौधे की जो है ना खाद की मांग अलग अलग रहेगी। और खाद की मात्रा फल वृक्षों के ऊपर भाई जो है ना अधिक निर्भर करा है, क्योंकि जो शुष्क क्षेत्र के जो फल वृक्ष हैं उनमें कम खाद की जरूरत है। जिस तरह जिक्र कर रहे हैं जिस तरह के जो नींबू वर्गीय बाग हैं उनमें जो है ना बढ़ोतरी और भाई अधिक पैदावार लेने के लिए अधिक खाद की जरूरत पड़ा है। तो इस करके भाई पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन है उनका जो बढ़वार का जो समय है उसके अनुसार उनको देनी पड़ेगी। हमने कुछ फल वृक्ष में भाई नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, उर्वरकों का प्रयोग पौधे की आयु के हिसाब से भाई

हमने उसमें खाद पानी देना है। कुछ सूक्ष्म तत्व भी हैं जिस तरह जिंक है, बोरोन है, लोहा है, मैंगनीज है, जरूरत पड़ने के अनुसार उन्हें भाई थोड़ी मात्रा में देन दे रहे। जो असंतुलित खाद के प्रयोग से भाई किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सका है, क्योंकि भाई जो फल वृक्ष हैं उनमें ज़्यादा बढ़ोतरी के लिए, अधिक उत्पादन के लिए भाई कई तरह समय समय पर सही पोषक तत्व और संतुलित मात्रा में जो है ना उपलब्ध करा कर जो है पौधे को जो है ना आप बढ़ा सको हो, पौधा जो है ना अच्छी वृद्धि लेगा। खाद के प्रयोग का समय के रहा है, जिन भाइयों ने बाग लगा रखे हैं इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई हमने खाद किस समय पर देनी जरूरी हो। फल वृक्ष में भाई क्रिया वृद्धि के लिए समय पर नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो सक्रिय वृद्धि है समय से पहला और शेष मात्रा भाई फल बनने के बाद दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। पौधे में गोबर की खाद, फास्फोरस और भाई पोटास दिसंबर के महीने में दें, नाइट्रोजन की आधी मात्रा फरवरी के महीने में दें और भाई आधी मात्रा अप्रैल में दें। अधिक मात्रा में भाई खाद और पानी देने तक जो है ना फूल फेर के ग्राम भाई जड़ने शुरू हो जाए, सड़ जाएंगे और भाई फल भी नहीं बनेंगे, तो बाग में दूसरी फसल उगाने की स्थिति में भाई अतिरिक्त खाद की जरूरत होगी, क्योंकि भी जो सूक्ष्म तत्व हैं इनकी कमी होने पर किसी भी समय पणिय छिड़काव कर सके हैं और मुख्य पोषक तत्वों के साथ भी जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको मिलाकर छिड़काव कर सके हैं। फल वृक्षों में भाई खाद देने का तरीका न्यूरागा, एक तो जब जो बाग है उनमें खाद देने का तरीका मिट्टी की किस्म के अनुसार, जलवायु के अनुसार, पौधे के बीच का जो अंतर है और भाई किसानों द्वारा जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो कृषि क्रिया है उनके ऊपर निर्भर करेगा। छोटे पौधे में भाई खाद को कम मात्रा में कार्बनिक खादों के रूप में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पौधे में खाद प्रयोग करने के बारे में कुछ तरीके भाई बता रहे हैं, जिस तरह की एक तो ठोस रूप में खाद दें तो इसका प्रयोग किस डाल करना चाहिए, तो इस विधि में खाद का प्रयोग भाई शुष्क रूप में कर सका है। छोटे पौधे में खाद को उनकी जड़ों के फैलाव तक सीमित रखा है, जबकि पुराने जो बाग लगा रखे हैं उनमें फैला करके ट्रैक्टर आदि तय भाई उसमें मिलानी है, क्योंकि भाई बड़े पौधे में जड़ें दूर तक रहे हैं। पौधे के चारों ओर का फैलाव तक जो है ना खाद का प्रयोग करना है, जड़ तक कह रहे हैं भाई पौधे का जो छाम देख लें भाई पौधे की कितनी दूर तक जा है उसके अनुसार भाई उसमें जो है ना आपने खाद देनी है। रासायनिक खादों के साथ साथ भाई गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या भाई जैविक खाद का प्रयोग भी कर सके हैं। दूसरी तरीके की खाद है जिस तरह के भाई द्रवित रूप में खाद का प्रयोग आप भी कर सके हैं, क्योंकि इस विधि में जो रासायनिक खाद है इसके अतिरिक्त गोबर है, घोड़े की लीद है, भेड़ बकरियों की खाद को पानी में मिलाकर उनको अच्छी तरह गोड़ कर भाई फिर जो है ना उस गोड़ को खाद के रूप में आप दे सको हो, और इसे जो है ना छिड़काव के अतिरिक्त पौधे के पास भूमि में प्रयोग करके भी इसका प्रयोग कर सके हैं। मिट्टी में मिलने वाले जो पहले पौधे के पास की मिट्टी को आपने जो है ना नम कर लेना है, और द्रवित खाद का प्रयोग के लिए भाई कुछ एक बातें हैं जिसका आपने ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ड्रिप सिंचाई है, जिस तरह के खाद का घोल बनाकर ड्रिप सिंचाई द्वारा भाई जो गुड़ी खाद है उसका प्रयोग कर सका है, क्योंकि भी ड्रिप प्रणाली के फर्टिलाइजर टैंक में घोलकर अच्छी तरह तैयार करके पानी के साथ पौधे तक उसको पहुंचा सका है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी भाई आप प्रयोग कर सका है। यो भी देखने में आया है कि जमीन के अंदर भाई देखा है कई बार जो है ना कुछ पोषक तत्वों का अधिक प्रभावशाली जो है ना अवशोषण होता रहा है। छिड़काव विधि से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण प्रकट होने पर भाई शीघ्र उन तत्वों की कमी को दूर कर सका है। फलदार पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में जस्ता है, लोहा है, बोरोन है, मैगनीज है, इसकी जरूरत भाई थोड़ी मात्रा में हुआ, ये थोड़ी मात्रा पौधे की जो बढ़वार है अधिक प्रभावित करेगी उसको, और जब आप जो है ना इनको छिड़काव करेंगे तो भाई उसमें कुछ एक बातों का ध्यान भी अपना रखना पड़ेगा। एक तो छिड़काव जो है ना सुबह के समय ओस सूखने के बाद करें, दूसरा अच्छे परिणाम के लिए भाई टिपाल रसायन का या भाई सर्फ का इस्तेमाल करें जो कि घोल को चिपकने का काम करेगा। सूक्ष्म तत्वों की जो सांद्रता है उसका विशेष ध्यान रखना है, ताकि पंक्ति में जो है ना ध्यान रखेंगे तो भाई जो पत्तियां हैं जलने का भय न रहे, क्योंकि कई बार देखा है अगर हमने उसकी सांद्रता नहीं जांची कि उसकी ताकत नहीं देखी तो भाई पौधे को वो नुकसान कर देगा। छिड़काव के समय हवा शांत व आने वाले 10-12 घंटे तक बारिश की संभावना नहीं होनी चाहिए, नहीं तो भाई जो छिड़काव कर रहे हैं वो सारा धोया जाएगा, इससे असर जो है ना पौधे के ऊपर कम रहेगा। फूल खिले होने की अवस्था में भाई छिड़काव

0: करना, इससे क्या होएगा कि जो छिड़काव करेंगे तो भाई फूल जड़ जाएंगे और फूल के परागण धूल धुल जाएंगे और जिससे फल नहीं बन पाएगा, इससे जो है ना फिर देखेंगे कि भाई जो फल है वो कम लगे और इससे जो है ना फिर नुकसान हो जाएगा। तो कुछ एक बातें जो है जानकारी दी भाइयों को कि भाई जो फलदार वृक्ष हैं उनमें संतुलित खाद और उर्वरकों का प्रयोग आपने किस तरह करना है। और भाई ईब लगे हाथ जानकारी दे दें मौसम की, भाई आज का अधिकतम तापमान का जिक्र कराएं।
1: आज का अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस।
0: और भाई इसी डाल जो है ना कल का जो मौसम का जिक्र करें तो वो रहेगा भाई अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। और इसके गिले गिले भाई जो कार्यक्रम रहेगा कल हमारा किसानवाणी, उसमें हम जो है ना बात करेंगे बाजरे की पैदावार किस तरह बढ़ानी है और आज की नसीहत में बात करेंगे चारे की कमी के समय भाई पशु आहार कैसा होना चाहिए। एक जानकारी और देंगे भाइयों ने गन्ना फसल में कीट नियंत्रण और भाई अन्य देखभाल किस डाल उन्हें आप कर सके हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और भाई ईब जो है ना करा दे भाइयों का मनोरंजन लगे हाथ।

سکے نہ جو منزل تک پہنچ سکے۔

शर्मा संतोषी लिख नया गीत, शर्मा संतोषी लिख नया।

ये तो सुनी भाई है नारागणी गायक कलाकार थे महावीर ग्रोवर। और भाई ईब जो है ना नई फसल नई उमंग में बात कर लें ग्वार की बिजाई पर। देखे हैं कि भाई जो ग्वार की फसल है हमारा जो हरियाणा है दक्षिण पश्चिम वाला उसमें जो है ना खरीफ की बाजरे के बाद दूसरी प्रमुख फसल है ग्वार। और ये खास करके हमारे जो जिले हैं सिरसा है हिसार है भिवानी है महेंद्रगढ़ है रेवाड़ी है या भाई रोहतक है प्रदेश के मुख्य जिले हैं यहाँ जड़ा भाई ग्वार की खेती हुआ है। और भाई ग्वार की खेती अगर हम चावा करना तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये रहा है कि भाई उसकी किस्म कौन सी बढ़िया रहेगी ग्वार खातर। तो उन्नत किस्में जो है ना जिस तरह के

एच जी 75 है। इस किस्म के पौधे भाई झाड़ी नुमा और भाई अधिक शाखाओं के हुए और यो किस्म 110-115 दिन में पक्का तैयार हो जाए और इसकी जो फलियां हैं वो एक सार हुआ है और इसका दाना भाई अच्छा लगा है देखने में भी, क्रीम से रंग को हुआ है, इस तरह के दूध है इस डाल का। यो किस्म बीमारियों के लिए सहनशील है और भाई अधिक गोंद उत्पन्न करने वाली भी बढ़िया किस्म है। और इसकी पैदावार का जिक्र करें तो भाई 7-8 क्विंटल जो है ना प्रति एकड़ तय निकल जा है। इसी डाल है भाई एच जी 365। इस किस्म का पौधा भाई छोटा हुआ है और जल्दी पकने वाली किस्म है। यो किस्म लगभग भाई 85 से लेकर 100 दिन तक जो है ना पकने में लेवा है। इसका दाना छोटा और स्लेटी से रंग को हुआ है और दाने की औसत पैदावार भाई 6.5 से लेकर 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ में निकल जा है। यो इसी डाल एक किस्म और है एच जी 563। यो भी जल्दी पकड़ने वाली किस्म है जो 85 से लेकर 100 दिन तक जो है ना लेवा है पकड़ने में। इसके पौधे पर फलियां भाई पहली या दूसरी गांठ से शुरू हो जाएं और इसका दाना चमकदार और भाई एच जी 365 के दाने से थोड़ा सा मोटा हुआ है। यो किस्म ग्वार की सभी बीमारियां की प्रतिरोधी है, इसमें भाई बीमारी कम लगने का खतरा रहा है। बिजाई का समय भाई बारिश पर निर्भर करा है क्योंकि ग्वार की बिजाई मानसून की बारिश होने पर करनी चाहिए। और शिखर पकड़ने वाली किस्म एच जी 365 व भाई एच जी 563 की बिजाई जून के दूसरे पखवाड़े में करने थे भाई अधिक पैदावार ले सका है। और देर से पकड़ने वाली जो किस्म है भाई एच जी 75 की बिजाई मध्य जुलाई में करनी चाहिए। बीज की मात्रा और भाई बिजाई का तरीका न्यू रहेगा। ग्वार की फसल उन्नत किस्मों के दाने से भाई भिन्नता के कारण बीज की मात्रा किस्म के अनुसार बदल दी रहा है। एच जी 365, एच जी 563, एच जी 2 बीज की एक एकड़ में बिजाई के लिए 5 से 6 किलोग्राम, एच जी 75 के लिए 7-8 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। बिजाई खुडों में भाई 45 सेंटीमीटर और पौधे में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। बीज के उपचार के लिए भाई जिक्र भी कर दे रहे हैं कि भाई अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए फसल के मुख्य रूप से क्या करना चाहिए कि हमने जो बीमारी है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से बचाने के लिए या भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की पूर्ति के लिए भाई कई बार देखा है कि जो फफूंदनाशक है राइजोबियम और भाई PSB कल्चर तय बीज का उपचार करके बिजाई करनी चाहिए। इसके लिए भाई एक एकड़ के बीज को 6 लीटर पानी और 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में आधे घंटे तक भिगोकर रखना है। इसके बाद आधा घंटा छाया में सूखने के बाद बीज का राइजोबियम व भाई BSB कल्चर तय अन्य दलहनी फसलों की भांति भाई उपचार करना है। उपचार बीज को भाई आधा घंटा छाया में सुखाने के बाद फिर जो है ना आपने इसकी बिजाई करनी है। उर्वरक का भाई आपने जो है ना ग्वार की अधिक पैदावार लेनी है तो भाई 16 किलोग्राम फास्फोरस, 35 किलोग्राम DAP या भाई 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तय मिलेगा। 8 किलोग्राम नाइट्रोजन भाई 18 से 20 किलोग्राम यूरिया डालना है प्रति एकड़ बिजाई ते पहला डालना है। यदि जमीन जो है ना गंधक की कमी है जमीन में तो भाई 8 किलोग्राम गंधक 60 किलोग्राम जिप्सम तय प्रति एकड़ बिजाई ते पहला डालनी है। निराई गुड़ाई का जिक्र करें तो भाई अच्छी पैदावार के लिए फसल में खरपतवार मुक्त आपने रखना है, समय समय पर ध्यान रखना है। इसके लिए भाई एक गुड़ाई बिजाई के 25-30 दिन के बाद और भाई जरूरत पड़े तो दूसरी गुड़ाई जो व्हील हो है आपका जो हड़ है उस तय भाई करनी है। इसके साथ साथ भी जो खरपतवारों की रोकथाम के लिए बैसालीन 800 मिलीलीटर को 250 लीटर पानी में अच्छी तरह घोल के फसल बीजने से पहले भाई जमीन में मिलाकर भी कर सके हैं। यदि जमीन भाई उपजाऊ हो तो 25% मात्रा आपने ज़्यादा डालनी है और भाई पानी यदि बारिश वाली फसल की जरूरत हो तो भाई सिंचाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई बारिश का पानी बहुत रहेगा। उसके लिए लंबे समय तक बारिश न होने की स्थिति में भाई एक सिंचाई फलियां बनते समय तक आपने करनी है। यह तो जिक्र करें भाई ग्वार की बिजाई पर।

0: रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: और भाई एक जो है ना जानकारी भाई अगला साझा कर रहे हैं कि भाई अटल भूजल योजना पे, भाई अटल भूजल योजना के है भारत सरकार के भाई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसको भाई 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि भी देश के 7 जल संकट ग्रस्त राज्यों में जन भागीदारी के माध्यम से भाई भूजल स्तर में सुधार लाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, यो भाई इसका उद्देश्य है। क्योंकि भाई जो योजना के उद्देश्य है, बजटीय प्रावधान है और काम करने के तरीकों को अच्छी ढाल समझने के लिए भाई जो है ना ये योजना शुरू कर रखी है, इसका उद्देश्य भी यही है। क्योंकि भाई जो अगर हम वित्तीय पोषण और बजट का जिक्र करें, इस योजना का कुल परिव्यय भाई 6,000 करोड़ रुपए है और इसमें भाई 50% राशि भारत सरकार द्वारा और 50% राशि विश्व बैंक के द्वारा भाई जो है ना ऋण के रूप में दी जा है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि भाई जो किसान है और जो आम लोग हैं उनको जल संरक्षण के लिए भाई जागरूक करना और समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाना है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर जल सुरक्षा योजनाएं बनाना ताकि गांव में उपलब्ध पानी का सही और टिकाऊ उपयोग हो सके। कृषि और अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें भाई पानी की जो फजूल खर्ची है उसको रोकना है, अधिक पानी वाली फसलों की जगह भाई कम पानी वाली फसलों को अपनाना है और ड्रिप व स्प्रिंकल सिंचाई को बढ़ावा देना है। और जिक्र भी करते रहे कि भाई पानी को आपने बचाना है तो इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि भी पानी को बचाना है। क्योंकि भाई अब देखा है कि ज़्यादातर लोग किसान जो धान की फसल पर ज़्यादा जोर दे हैं, अगर भाई धान की जगह कम पानी वाली जो फसलें हैं उन्होंने बोएंगे एक तो देखो दाम भी बढ़िया मिलेगा और भाई पानी की भी बचत हो सका है। जिस तरह के बाजरे का जिक्र करते रहे हैं, मक्के का जिक्र करते रहे हैं, इस डाल की फसल आप ले सका है, इससे जो है ना भाई पानी बच सकेगा। और ये कौन कौन से ऐसे राज्य है भाई जिनमें योजना चलाई गई है, एक तो गुजरात, दूसरा भाई हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और भाई उत्तर प्रदेश। कुल मिलाकर यो योजना भाई जल संकट से निपटने के लिए स्थायी स्तर पर ग्राम पंचायतों को और भाई लोगों को जोड़कर एक स्थायी जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित करने का एक बड़ा प्रयास है। तो भाई ये तो हमने जिक्र कराया कि भाई अटल भू जल योजना के है। और भाई एक जानकारी भाई ना और दे दें प्राकृतिक खेती में कि भाई बीज अमृत किस तरह आपने बनाना है। क्योंकि भाई जो किसान भाई हैं अगर भाई प्राकृतिक खेती पे थोड़ा सा भी जोर देंगे तो भाई एक तो देखो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, दूसरा भाई जो पैदावार होगी थोड़ी बहुत ही कम भी होगी तो भाई कह रहा है जो शुद्ध होगा तो भाई महंगा भी बिकेगा, इससे जो है ना किसान भाई को फायदा भी होगा। और समय भी यही कह रहा है कि भाई जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके दाम ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि हर व्यक्ति ने सोचा है कि मैंने तो स्वस्थ रहना है, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा भोजन मिला। तो भाई इस तरह जो है ना आप बीजामृत कैसे तैयार कर सके हैं, इसके लिए जरूरी सामान है भाई 4 लीटर पानी, 1 किलो देसी गाय का गोबर लेना है, 1 लीटर देसी गाय का मूत्र, 10 ग्राम चूना और भाई 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और जमीन के किनारे की मुट्ठी भर मिट्टी लेनी है, 15 लीटर आकार का एक ड्राम भी लेना है जिसमें आपने इनको घोलना है। गाय का 1 किलो गोबर सूती कपड़े में लेकर और उसको भाई अच्छी तरह बांध लें, फिर 4 लीटर पानी में 12 घंटे तक डुबो का उसको रखना है, 50 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम चूना रात भर भिगो कर रखा है। अगली सुबह कपड़े में बंधे गाय के गोबर को पानी में 3 बार अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, फिर इस पानी में खेत के मैड या बांध की 1 मुट्ठी मिट्टी को अच्छे से मिला देना है। ये जो बातें बताई है भाई इस घोल को 1 लीटर गोमूत्र

5 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम गुड़ और चूना पानी मिलाकर अच्छे से मिला दें। अब यह घोल बीजोपचार के लिए तैयार हो गया और भाई आप इसको अपने खेत में छिड़क सका है। और एक जानकारी और भाई है ना, किसान कॉल सेंटर की, किसान कॉल सेंटर का नंबर है भाई 1551।

और भाइयों, ये तो हमने जानकारी दी प्राकृतिक खेती के बारे में, और इसके गिला एक कार्यक्रम भाई अंदाता यही संपन्न हो रहा है। साले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इब्रो इंडिया, गांव तखाना, तरावड़ी।
1: पापा सुनो, आपने इब्रो इंडिया का पैगाम सुना?
2: कौन सा पैगाम बेटा, जरा सुनाओ तो।
1: लो फिर सुनो।

0: समझा। खेतों में हमेशा वैज्ञानिक सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। किसानों का हितैषी विप्रो इंडिया तखाना तरावड़ी।
1: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सब बण भैया नायर सले भाई की ओर तक फिर राम राम। कार्यक्रम ग्राम संसार और इसमें भाई जानकारी भी साझा कर रहे हैं भाइयों के लिए और इसके गिला गिला भाई थोड़े से अंतराल भी ले लिया और फिर मनोरंजन भी करावेंगे भाइयों का।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे,
3: फर्जी ऑफर से सावधान।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जिंदगी अनमोल है, इलाज भी भरोसेमंद होना चाहिए।
7: सिर की चोट, नसों की हर समस्या, ब्रेन स्ट्रोक व दिमाग से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज
6: ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर हिमांशु जैन द्वारा
7: हरियाणा सरकार एवं सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
6: डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल मोहन नगर कुरुक्षेत्र
7: 8708903436।
1: और भाइयों को सुनवा रहे हैं ये रागनी।

0: और भैया ना ये तो सुनी रागनी गायक कलाकार थे सीसा सिंह वे साथी। और भाई ईब जो है ना बात कर लेंगे थोड़ी सी बच्चों के मानसिक विकास में अनुशासन का महत्व पे, पर भाई बात करने से पहला थोड़ा सा ले लें अंतराल।
1: अब दर्द नहीं जिंदगी फिर चलेगी।
2: फ्रैक्चर, हड्डियों व जोड़ों, घुटनों और कंधों का आधुनिक इलाज अनुभवी विशेषज्ञों के साथ।
1: अब अस्पताल हरियाणा सरकार व सभी प्राइवेट टीपीए पैनल पर उपलब्ध।
2: संपर्क करें डॉक्टर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मोहन नगर, कुरुक्षेत्र, 8708903436।
3: अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, सफल भविष्य की नींव और उज्जवल करियर बनाने के लिए अब प्रवेश लें NIIM विश्वविद्यालय में,
4: जहां अनुभवी शिक्षकों व इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स द्वारा विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
3: इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, IT, साइंस, पत्रकारिता, मैनेजमेंट सहित 100 से अधिक करियर ओरिएंटेड कोर्स उपलब्ध हैं।
4: तो देर किस बात की, अपने सपनों को दे नई उड़ान, आज ही प्रवेश ले NIIM यूनिवर्सिटी कैथल।
5: मंगल भवन
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
7: पापा सुनो, आपने इब्रो इंडिया का पैगाम सुना?
8: कौन सा पैगाम बेटा, जरा सुनाओ तो।
7: लो फिर सुनो।

0: समझा, खेतों में हमेशा वैज्ञानिक सलाह से ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। किसानों का हितैषी विप्रो इंडिया तखाना तरावड़ी।
1: और भाइयों ईब जो है ना जानकारी दे रहे हैं, भाई चर्चा भी कर रहे हैं कई ग्रह, क्योंकि भाई जो जीवन में अगर कोई अनुशासित रहेगा तो भाई उसका जो व्यवहार है, चरित्र है, बहुत

बढ़िया रहेगा। तो इस बात ने लेकर भाई बच्चों के बारे में भी जिक्र कर रहे हैं हम कि भाई बच्चों के जो मानसिक विकास है उसमें अनुशासन का के महत्व है, क्योंकि भाई जो बच्चों का मानसिक विकास है उसका होना बड़ा जरूरी है। कई बार देखे हैं कि जो छोटे छोटे से बच्चे हो ना, घर में किसी के बच्चे आ जाए तो शरारत कर दे रहे हैं, पर भाई ने सोचा है कि चलो कोई बात नहीं, बालक है, लेकिन अगर उसकी यह आदत बन गई तो भाई बड़ा होकर बड़ा दिक्कत देगा वो। तो इस करके भाई हम तो यही कहें कि अपने बच्चों को, जो भी छोटा बच्चा हो उसको अनुशासित में रखें। मान लो किसी के घर जा रहा है और उड़ा जाकर भाई तोड़ फोड़ कर दे, कुछ और चीज़ें ना खराब कर दे, तो भाई वो तो उस टाइम तो कुछ करना नहीं है, लेकिन जब भाई उनके जाने के बाद वो ज़रूर जिक्र करेगा भाई फलाने के बच्चे अच्छे नहीं है। तो हम तो यही कह दे रहे हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनको अनुशासन में रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भाई बच्चों का जो मानसिक विकास है उसमें अनुशासन एक मजबूत नीम की तरह जो है ना काम करा है। कई लोग अनुशासन को केवल भाई ने सोचा है कि भाई सजा देना या नियम में बांधना है, इससे जोड़कर देख दे रहे हैं कि भाई एक तो अनुशासन हो गया भाई पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन असल में क्या है, जो बच्चों में जो है ना आत्मनियंत्रण और सही निर्णय लेना सिखा हुआ है। तो भी बच्चों का जो मानसिक विकास है उसको आपने ध्यान भी रखना है, क्योंकि मानसिक विकास बड़ा जरूरी है बच्चे का। कई बच्चे सोचे हैं कि गलियां में खेल कूद ले हैं, पर भाई पहले की तरह तो है नहीं, जो बच्चे थे भाई गारा में मट्टी में खेल खाल का जो है ना घर आए कर थे, पर भाई आज तो बच्चे जो है ना इन सारी चीज़ों से दूर हो गए और घर में कैद होकर रह गए, क्योंकि भाई आजकल ना तो देखो वो पहले वाले खेल रहे, बच्चा बाहर खेल ले था, मिट्टी में भी खेल ले करे था और भी जो है ना खूब खेल काय करे था, पर आज घर के अंदर भाई वो या तो टीवी देखेगा या भाई अपना मोबाइल देखेगा। तो इससे क्या है, बच्चे का थोड़ा मानसिक विकास तो भाई विकसित होने की बजाय थोड़ा जो सोचा कि एकदम संकुचित सो जाएगा बच्चे ना, जो है ना छोटा बच्चे ने भी देखो भाई वो भी जो है ना अगर उसकी मम्मी कोई काम कर रही है ना उसने मोबाइल दे देगी, जिससे वो बच्चा मोबाइल में लगा रहेगा और वो पता नहीं क्या देखेगा, बच्चे बड़े तेज हो रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं भाई सारा दिन जो है ना थोड़ा सा भी काम कर दे, कहने ना कह दे तो देखेगा मेरा पहला ने कहेगा मोबाइल दे, इससे क्या होगा भाई बच्चे का मानसिक विकास तो देखो होगा नहीं, क्योंकि बच्चे की जो आंखें हैं उनके ऊपर भाई बचपन में जो है ना जोर पड़ेगा, जिससे जो है ना हो सके तो भाई उसकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। तो भाई बच्चे का जो मानसिक विकास है खेल खिलाने चाहिए उनको, जो भाई व्यायाम करवाओ और अच्छा पौष्टिक आहार दो, तो ये कई बातें हैं आपने ध्यान भी रखनी है। और निश्चित रूप से जो है ना बच्चों को एक सुरक्षित माहौल भी देना है, और उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्या गलत है और क्या ठीक है, उनका मानसिक जो तनाव है और उलझन है वो कम होनी चाहिए। कई बार देखा है कि जब बच्चे के पेपरों का टाइम आवा है तो मानसिक दबाव में आ जाए, सोचा पता नहीं क्या आ गया भाई, उसको जो है ना समझाओ कोई दिक्कत नहीं है, अभी बच्चों को भाई जो परीक्षा है देखो होनी है, आप अपना काम करो, आप डरो मत, परीक्षा को हवा नहीं बनाओ भाई। तो उससे कई बार बच्चे जो है ना तनाव में आ जाए, सोचते रहे कि भाई ईब क्यों होगा, कैसे पेपर होंगे, तो तैयारी करेंगे तो भाई बच्चे जो है ना उस भाव से जो है ना उस भावना को दूर कर देंगे, क्योंकि जो डरने की जरूरत नहीं है। तो अनुशासन बच्चों को अपनी भावनाएं हैं जिस तरह के गुस्सा है या जिद है इसको संभालना सिखाता है, क्योंकि भाई कई बच्चे हैं गुस्से में जल्दी आ जा, या भाई कोई छोटा बच्चा है वो जिद कर ले है कि मैंने तो यही चीज़ लेनी है और वो ले कर ही मानना है, नहीं तो भाई रोवा है वो, फिर सोचा है कि भाई तंग कर लिए तो उसको वो चीज़ दिला के रहे, तो बच्चा जिद्दी हो जाए। ये बात जो है ना इनको कई बार देखते यूँ भी रहे हैं कि जो बच्चे जो है ना घर में रहेंगे जोर जोर से चीख मारेंगे चिल्लाएंगे, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, और भाई उनमें सहनशीलता और मानसिक मजबूती भी जो है ना आवेगी अगर उनकी भावनाओं पर नियंत्रण करेंगे। बेहतर ध्यान और भाई एकाग्रता भी जो है ना मानसिक जो भाई विकास है उसमें पूरा सहयोग दे है, क्योंकि समय पर सोना जागना और भाई पढ़ाई करने का अनुशासन दिमाग को शांत रखा है। भाई कई बार देखा है कि बच्चे आज का जो वातावरण है कुछ बदलाव में है, क्योंकि बच्चे जो है ना भाई टीवी देखते रहे हैं या मोबाइल ज़्यादातर देखा है, लेट सोवा है, और फिर भाई ना सवेरे स्कूल में भी जाना हुआ उनकी मम्मी उनको जो है ना धक्के दे ठावेगी और भाई तैयार करेगी, फिर भाई जो है ना उठेगा वो रोवेगा चिल्लावेगा फिर भाई वो स्कूल में जाएगा। तो इस करके भाई उनका बेहतर ध्यान भी करना है, एकाग्रता भी रखनी है, तो भाई उसको ऐसी आदत डालनी चाहिए ताकि वो समय पर सोए समय पर जागे और भाई समय पर स्कूल पर जाए और अनुशासन बनाकर रखे भाई, और नियमित दिनचर्या तय बच्चों की जो ध्यान लगाने की क्षमता है इससे जो है ना वो भी

बढ़ जाए अगर हम जो अनुशासन है उस पर ध्यान देंगे उसके। और भी कई बातें हैं जिस तरह जिक्र भी करते रहे बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे थोड़े जिद्दी रहे हैं और उनका जो स्कूल का प्रदर्शन है और सीखने की जो क्षमता है उसको भी बेहतर बनाता है भाई अनुशासन। सही निर्णय लेने की भी भाई उनमें जो है ना पूरी ताकत रहा है, क्योंकि अगर बच्चे सही निर्णय लेगा समय के अनुसार भाई मैंने के बनना है, आगे बढ़ोगा कैसी पढ़ाई करनी है, तो ये बच्चे अनुशासन में रहकर भी कई बार जो है ना अपनी गलतियां के परिणाम देखा है और वो सोचना शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो उनकी तर्क शक्ति का विकास होना बड़ा जरूरी है, तो ये भी अनुशासन से ही आएगा भाई। वे भविष्य में अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सीख जाएं। एक बात और है भाई, अनुशासित बच्चे जब अपने छोटे छोटे काम खुद करा है तो उनमें भाई आत्मनिर्भरता आती है, लक्ष्यों को पूरा करने पर भाई उनको खुद पर भरोसा मजबूत होता है और भाई यह सकारात्मक मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई अनुशासन बच्चों को दूसरों का सम्मान करना और अपनी बारी का इंतजार करना भी सिखाता है। ऐसे बच्चे समाज में, स्कूल में और दोस्तों के बीच जल्दी घुल मिल जाते हैं। अच्छे सामाजिक रिश्तों से उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो भाई अपने जो बच्चे हैं उनके अंदर भाई मानसिक विकास के लिए अनुशासन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। मारपीट या भाई चिल्लाने तय बच्चा जिद्दी या डरपोक बन जाए, इसकी जगह उनको भाई प्यार तय बातचीत करके और भाई ऐसे कुछ ऐसी बातें बता करके उदाहरण पेश करके अच्छे बच्चों को अनुशासित करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहा है। और भाई एक बात का और ध्यान रखना है अपना, अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा किस उम्र का है, कैसा उसके साथ आपने व्यवहार करना है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो बच्चे हैं भी बचपन में अगर हम उनको अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो भी भाई बड़े होकर उन्हीं बातों का पालन करेंगे, अनुशासन में भी रहेंगे और उनका व्यवहार भी दूसरों के प्रति अच्छा रहेगा। और घर में भी अगर भाई बच्चे अच्छे होंगे तो वो भी अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को भी मानेंगे और भी जो बच्चे हैं उन्हें भी कहकर अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान भी करना चाहिए। तो ये तो हमने जिक्र करें कि बच्चों के मानसिक विकास में भाई अनुशासन का की महत्व है। और भाई ईब करा दें भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं पहला ये रागिणी।

सुपने में ससुराल दे कर गया।

और भैया ने यह तो सुनी रागिणी गाय कलाकार थे गुलाब सिंह खंडेवाल। और इसी के लायक कार्यक्रम ग्राम संसार यही संपन्न हो रहा है। सरले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम जय जवान।

कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार की ओर से नमस्कार। आज आपके गीतों के साथ हाजिर आपका दोस्त संत कौशिक। सैनिक भाइयों, आप लगातार देश की रक्षा में लगे हैं दिन रात, इसी वजह से देश के नागरिक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। आप हैं तो हम सबका वजूद है, आपको हमारा सलाम। आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ देशभक्ति गीत सुनते हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सैनिक भाइयों, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप कड़ाके की ठंड में, धूप, बरसात, दिन रात सरहद की रक्षा करते हैं। तभी हम घरों में चैन से सोते हैं। आपकी कर्तव्य निष्ठता को हमारा सलाम। इसी संदेश के साथ अब अनुमति दीजिए कार्यक्रम जय जवान संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता। और गुलदस्ता में आज हम कुछ बात करेंगे गजलों की, गुलाम अली साहब की। आइए सुनते हैं पहली गजल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर आपका दोस्त संत कौशिक। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बारिश ये केवल आसमान से गिरती बूंदों का नाम नहीं, ये प्रकृति का संगीत है, प्रेम का संदेश है।

यादों की खुशबू है और जीवन में नई उम्मीदों का आगाज है। पहली बारिश की सौंधी महक, ठंडी हवाओं का स्पर्श और दूर तक छाए बादल मन को बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं। शायद यही कारण है हिंदी सिनेमा ने भी बरसात को सबसे अधिक गीतों से सजाया है। बरसात की हर बूंद में एक अफसाना मिलता है, जो दिल से सुन ले उसे अपना जमाना मिलता है। इन्हीं भीगे एहसासों के साथ आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं।

जी हाँ श्रोताओ, सचमुच ऐसा लगता है जैसे बादल स्वयं कोई राग छेड़ रहे हों। कहते हैं बारिश की आवाज़ दुनिया का सबसे स्वाभाविक संगीत है। न कोई साज, न कोई मंच, फिर भी हर दिल को छू लेने वाली धुन। भीगी हुई फिजाओं ने फिर दस्तक दी है, यादों की किताब आज फिर खुली है। बरसात और प्रेम का रिश्ता बहुत पुराना है, कितनी ही प्रेम कहानियां पहली बारिश के साथ शुरू हुई और आज भी गीतों में जिंदा है।

साथियों, कभी कभी एक बरसाती शाम पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। बारिश में हुई मुलाकातें समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी अनमोल हो जाती है। कुछ रिश्ते बारिश जैसे होते हैं, थोड़ी देर बरसते हैं मगर उम्र भर महकते हैं। अब बात उस बारिश की जिसका इंतजार केवल प्रेमी ही नहीं किसान भी करता है। जब बादल खुलकर बरसते हैं तो खेतों में हरियाली लौट आती है और धरती मुस्कुरा उठती है।

दोस्तों, बरसात का महीना भारत की संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। तीज, झूले, मल्हार, लोकगीत, चारों ओर फैली हरियाली, ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं उत्सव मना रही हो। इसी सुनहरे एहसास के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, जब बादल बरसते हैं तो केवल धरती ही नहीं भीगती, मन भी भीग जाता है। बारिश हमें सिखाती है जीवन में परिवर्तन प्रकृति का सबसे सुंदर नियम है। हर बादल सिर्फ पानी नहीं लाता, कुछ उम्मीदों की छांव भी साथ लेकर आता है।

श्रोतो, बरसात का एक रंग विरह का भी है। जब अपने दूर हों तो हर बादल संदेश वाहक लगता है और हर फुहार किसी की याद लेकर आती है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: श्रोताओ, रिमझिम फुहारें हमें बचपन की गलियों में ले जाती हैं, कागज़ की नावें, भीगती सड़कें, बिना किसी चिंता के बारिश का आनंद। शायद यही छोटी छोटी खुशियां जीवन को बड़ा बना देती हैं।
1: Thank you.

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। बरसात का मौसम यूं ही आता रहे, हर दिल में मोहब्बत का दीप चलता रहे, चेहरों पर मुस्कान, रिश्तों में अपनापन और जीवन में विश्वास बना रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समय है क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले

0: करेंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रमाणन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिली इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
6: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस प्लान का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की कार्यशाला की 74वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप

0: पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांगद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए 2 संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा।

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।

0: स्पेशल प्रोग्राम आज के फनकार।
1: ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।
2: दिल गया रौनक़े

0: गई।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी तीन फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पर आई, दिल एक मंदिर और काजल।

राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन

0: हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले, उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज वो सब खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: सौदा यह है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा, और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

ढले। एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हमसे

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: मन चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है,
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
3: FM 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती की कार्यक्रम। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वाले सभी साथियों को आपके दोस्त संत कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित ये कार्यक्रम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपके ढेर सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, कृपया मोबाइल नंबर नोट करें 9466021336। इस नंबर पर अपना नाम और पता, साथ में जिस गीत को आप सुनना चाहते हैं वो लिखकर भेजिए। निश्चित तौर पर आपकी फरमाइश पूरी हम करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। आप सभी की फरमाइश के साथ कार्यक्रम का पहला गीत याराना फिल्म से, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, ये हमारे नियमित श्रोता हैं। बागड़ी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मनभावन, शोभा, कपिल, नैना, सत्यनारायण, फुंदीबाई बागड़ी, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेडी सौरभ, साइना शर्मा और निवान शर्मा, पंजाब वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशु, निरंजन, सौम्य और अविरल सिंह,

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून, अगला एसएमएस। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे नियमित श्रोता हम तक जुड़े हैं, तिलक राज अरोड़ा जी, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा। सांगली जिले से हमारे श्रोता हैं अल्ताफ हुसरे, सैफुल्ला, सबाहत, किरत और रेहान शेख। लाकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, बिट्टू, साजदा रानी और हिना कौसर। गांव झगुड़ी जिला यमुनानगर से रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन, मनकीरत और मनराज। चौटाला हरियाणा से दारा सिंह, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगली अलोट जिला आलोट, जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़। इसके साथ ही एसएमएस हम तक पहुंच रहा है प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, फासी जुनेद, जुबेर, मुस्कान, जाकिर और मोहम्मद फजिल। सीकर राजस्थान से हमारे श्रोता हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर, तुषार, रिंकी। खैल बाजार पानीपत से हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और श्री नानक चंद मल्होत्रा। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावनी जिला मुरादाबाद से। किदवई नगर शिदपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा, अंजुम खान। नई बस्ती गंज चुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नासमा बेगम, तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। अगला एसएमएस मेन बाजार कुंडलवाली महाराष्ट्र से ये हमें प्राप्त हुआ है और श्रोता जुड़े हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन, प्रवीण, माहिरा नूर। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोट। जिला नांदेड़ एताला महाराज से शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्नव, दुर्गेश्वरी, राखी, तृप्ति जयसवाल। ग्राम पंचायत बठेला पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकंश वर्मा, अंजलि, राजिम, ज्योति, प्रहलाद वर्मा। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी वीपी, रंजू, अशोकपुरी, सुशील कुमार, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम, रमा, पाली, सुनील पाठक, वीकेपुरी और विनोदपुरी। शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशनपाल सकपाल, आशा सानिया,

सोनिया, साईराज और विशाल गांव जाखोद राजस्थान से, शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और पूजा खटक गनगोला दातागंज जिला बदायूं से, इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शहबाज खान, शैफी खान, ईशान और आजम खान, एहरान खान, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, इसके साथ ही एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है, जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, सुमीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, बानू मुलानी, बादशाह मुलानी और समस्त मुलानी परिवार पंढरपुर से। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस मदमस्त नगमे के साथ, फिल्म याराना से।

श्रोतो, याराना फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम चांदनी रातें का रंगारंग आगाज आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर त्रिदेव फिल्म से ये गीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, ईशान और पूजा। मसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून, निशा, सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक, लुबना और यश। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता। अगला एसएमएस गंज टंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिर बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान। सोनू, रवि, राज, गुलशन, लक्की, ये हमारे श्रोता हैं जालंधर सिटी पंजाब से। विनय मोहर, मोहन खार, वन मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी, सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा से। मोहम्मद, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से। ये एसएमएस हमें दोबारा प्राप्त हुआ है। पांडर कवडा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री। बाबा साहब कंगनकर, साखरबाई, परमेश्वरी, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी और समस्त परिवार। संत रोहिदास रेडियो श्रोता संघ अहिल्यानगर से ये हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं। कुरुक्षेत्र छोटा बाजार थानेसर से हमारे नियमित श्रोता श्याम शर्मा, मिली शर्मा, चिराग, राघव, तनुज, पलक, मास्टर उदेश। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घड़े, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहब, रामनिवास, धनंजय और पीबी कुलथे। भावी निमगांव महाराज से श्रीराम गोंधली, उषा, हर्षदा, वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली। पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। दतरंगी से हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। इसके साथ ही मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म त्रिदेव से।

श्रोताओ, अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर कंवर कॉलोनी वडवाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना प्रणय और हीरामन, गांव निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत और करमजीत कौर हमारे नियमित श्रोता हमसे जुड़े हैं। शीतल रेडियो श्रोता संघ बहरामपुर टेमा खरगोन मध्यप्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा, अमित, सचिन, समरराज, आर्यन, आरोही, एशिका, अंजलि, श्वेता,

दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमारे निमित श्रोता है राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बाबू और डब्बू। गांव खारियां ढानी जिला सिरसा हरियाणा से सतविंद्र सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया। उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम और आनंद पाकुड़ झारखंड से ये श्रोता हमसे जुड़े हैं। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंटले, आरती, राजेश, शिवसागर, इंद्राबाई, खांडवी, बुलढाना से दीपाली, राम धाड़े और स्वराज राम धाड़े हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं। गांव गोंदर करनाल से किरण पाल, बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कामचोर से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आइए कार्यक्रम चांदनी रातें

परिवार के सभी सदस्य गगनपुरा झारखंड से ये श्रोता हमसे जुड़े हैं। जलालाबाद से हमारे श्रोता हैं राशिद, मंसूरी, आर्यन और सयान। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, गवानकर, राही, सरिता, सिद्धांत, एकांश और टुकटुक। एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं। नाम है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल और तन्वी बोट। अगला SMS जिला अंबाला हरियाणा से ये प्राप्त हुआ है। गांव उगाला से हमारे नियमित श्रोता हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य, मेघा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु, रिधान खुराना। रामगंज खंडवा बरते से विजय मोहाबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, ईशु, सपना, शिवी, सयोली, अनय, अनाया और पेंटर बाबू। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कलाकार फिल्म से ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोतो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत सत्य भी सत्ता फिल्म से। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर हमारे नियमित श्रोता जुड़े हैं मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी अनमोल विवान मिगलानी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल और कुणाल मेहरा कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमारे श्रोता जुड़े हैं मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीता गीतुर निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश युद्धव गांव कलाना भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहित ऋतिक और बलवीर सिंह अगला एसएमएस प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ रेणू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल बेबीसिया और जालना शहर से सोमनाथ गीता ओम सुभाष चंदन एकनाथ और संगीता जाधव कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा बंसीलाल संधु कबीर सिंह संधु वर्नीत ये हमारे श्रोता जुड़े हैं पंजाब से लेवई

छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास रानी मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी, हेमलता लाल गिरिस्वामी, हिना हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म से ये गीत।

अयशोदव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कयामत से कयामत फिल्म तक ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा वाघमारे और शशांक वाघमारे संभाजी चौक से ये हमारे श्रोता जुड़े हैं। अगला एसएमएस, दादा बाबू रोड किरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा हसन, बाबू अहमद मिफरा, बेबी चाहत और सादिका। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुधाश, सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु। जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से नरसिंह, गोविंद, वैष्णव, मुस्कान, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। इसके साथ ही हमारे श्रोता हैं बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित, लकी, तानिया और समस्त परिवार। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य, मुराहू, देवंती, विजय और सरोज, सुंदर और सुमन। अगला एसएमएस, ममता मारकंडे, संजय और बेबी किट्टू, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से। फाजिलका पंजाब से क्रियांश, योगेश, ओम, बेबी, गरिमा, रजत और मनीष चौधरी। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम, सहारन, मोनिका, मनीष। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कयामत से कयामत तक फिल्म से ये गीत।

और श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम प्रस्तुति आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फकीरा फिल्म से गांव फ्रांसी हिसार से हमारे निमेश होते हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु, पाकुड़ झारखंड से हमारे श्रोता जुड़े हैं, माँ मूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपाल सोपान ताइड़े, वसंत राव, पी एस नवानकर, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी और पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर

और श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम चांदनी रातें यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों

0: को ध्यान में रखेंगे।
1: तीसरा इशू,
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रमाणन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।